0: जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बहनों ने आपनी बहन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 एफएम माते ने आप सब नु घणीमान स्वागत करा हूं अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जेम के भाई बहनों अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी जहां कार्यक्रम खेतीबाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो किसान भाई बहनों आज अमारी कार्यक्रम में आपते की बातचीत नु विषय है कि आपणे जलवायु अनुकूल खेती हरते करी शकां। जेम कि आपणे देखी रहा कि घणा कानो आ परिवर्तन जलवायु माते थई रह्यो है ते एने कारण आपणी खेती प्रभावित थई रही है। ते एवं में आपणे ने जलवायु अनुकूल खेती हरते करवी है ई हंगरी वाते आज आपणे कार्यक्रम में करवा वारा हां। तो भाईन बोनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तकी घणा कानी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरावी था गीत ने मोरे कर आपणी वाते। तो किसान भाई बहनों आप हमर दरेजू आपणो रेडियो आपणी वाते वग रेडियो 90.8 एफएम माते।

0: हैं वही सीखते हैं और जो सीखते हैं वही आगे समाज को लौटाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आदिवासी समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि जंगल, पहाड़, नदी, खेत, पशु पक्षी और पूरा प्राकृतिक वातावरण ही उनका विद्यालय बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: वे प्रकृति के बीच रहते हुए जीवन के ऐसे अनमोल पाठ सीखते हैं जो उन्हें जिम्मेदार, संवेदनशील और आत्मनिर्भर बनाते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं आदिवासी बच्चों के पारंपरिक सीख और प्रकृति से जुड़ाव को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि प्रकृति ही हमारे बच्चों की पहली पाठशाला है, तो साथियों आदिवासी बच्चों का बचपन प्रकृति की गोद में ही बीतता है।
1: जी जी,
0: जैसे कि सुबह के पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की छाया, खेतों की हरियाली और बहती नदियाँ, ये सभी चीजें उनके जीवन का हिस्सा होती हैं। अंजलि जी, वे छोटी उम्र से ही समझ जाते हैं कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि उनके जीवन का आधार है।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें ये सिखाया जाता है साथियों कि पेड़ काटने से पहले नया पौधा लगाना चाहिए, जंगल से उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो, पानी की एक एक बूंद की कीमत समझनी चाहिए, और यही शिक्षा उन्हें पर्यावरण संरक्षण का सच्चा संदेश देती है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल यही बात आती है कशिश, बुजुर्गों से मिलने वाली जीवन की सीख की। तो श्रोता साथियों, आदिवासी समाज में दादा दादी, नाना नानी और गांव के बुजुर्ग बच्चों के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे कहानियों, लोकगीतों, कहावतों और अनुभवों के माध्यम से बच्चों को जीवन के मूल्य सिखाते हैं।
0: जी हाँ,
1: वे बताते हैं कि मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता।
0: बिल्कुल,
1: ईमानदारी, सादगी, सहयोग और सामूहिक जीवन की भावना ही समाज को मजबूत बनाती है। बच्चे इन सीखों को केवल सुनते ही नहीं है बल्कि अपने दैनिक जीवन में अपनाते भी है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें श्रोता साथियों जंगल से जुड़ी पारंपरिक जानकारियों की, तो देखते हैं कि आदिवासी बच्चे बचपन से ही जंगल के पेड़ पौधों, औषधीय जड़ी बूटियों, मौसम के संकेतों और पशु पक्षियों की पहचान करना सीखते हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, उन्हें यह पता होता है कि कौन सा फल खाने योग्य है और कौन सी जड़ी बूटी छोटी मोटी बीमारी में काम आती है, और किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी पुस्तक के सुरक्षित रखा जाता है। हम देख सकते हैं कि आदिवासी संस्कृति में मैं से पहले हम आता है, बच्चे छोटी उम्र से ही मिलजुल कर काम करना सीखते हैं। खेतों में परिवार की मदद करना, त्योहारों में भाग लेना, गांव की सफाई करना और जरूरतमंदों की सहायता करना उनके संस्कारों का ही हिस्सा होता है। इससे उनमें सहयोग, जिम्मेदारी और सामाजिक एकता की भावना भी विकसित होती है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल यही अब बात आती है कशिश, त्योहार और संस्कृति से जुड़ाव की। श्रोता साथियों, आदिवासी समाज के त्योहार केवल उत्सव नहीं होते बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर भी होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: फसल कटाई, वर्षा का आगमन, नए अन्न और जंगल से जुड़े अनेक पर्व बच्चों को ये सिखाते हैं कशिश कि प्रकृति का सम्मान करना हमारा सभी का कर्तव्य है। इन अवसरों पर बच्चे लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्र सीखते हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत होती है। इसी के साथ श्रोता साथियों, आदिवासी बच्चे कम उम्र से ही अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करना सीखते हैं। वे पशुओं की देखभाल करते हैं, खेतों में सहयोग करते हैं, लकड़ी और पानी लाना, बीज बोना और पौधों की रक्षा करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत करने की आदत विकसित होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, आदिवासी संस्कृति और प्रकृति को लेकर और हमारे बच्चों का जुड़ाव इससे हम कैसे कर सकते हैं इस विषय पर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि आदिवासी बच्चों की पारंपरिक सीख और प्रकृति से जुड़ाव किस तरीके से है। श्रोता साथियों, जब बच्चे पेड़ों के साथ खेलते हैं, पक्षियों की आवाज पहचानते हैं और नदियों के किनारे समय बिताते हैं, तब उनके मन में प्रकृति के प्रति अपनापन पैदा होता है।
1: बिल्कुल,
0: कशिश में समझ पाते हैं कि यदि जंगल सुरक्षित रहेगा तो पानी बचेगा, पानी रहेगा तो खेती होगी और खेती होगी तो जीवन खुशहाल रहेगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। यही अगर बात करें चुनौतियों की, तो हम देखते हैं कि आज बदलती जीवन शैली, मोबाइल फोन, इंटरनेट और आधुनिकता के कारण बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कई श्रोता साथियों पारंपरिक खेल जो है, लोकगीत कहानियां और जंगल से जुड़ी जो जानकारियां हैं, वो भी धीरे धीरे भुलाई जा रही हैं। यदि समय रहते अंजलि जी इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुँचाया गया तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर कमजोर पड़ सकती है।
0: जी जी,
1: ऐसे में हमें श्रोता साथियों कुछ प्रयास करने चाहिए, जैसे कि बच्चों को समय समय पर जंगल, खेतों और प्राकृतिक स्थानों की सैर कराई जानी चाहिए।
0: जी हाँ,
1: दादा दादी और बुजुर्गों की कहानियां सुनने की जो परंपरा है उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी के साथ विद्यालयों में भी सांस्कृतिक और स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को भी स्थान दिया जाना चाहिए। बच्चों को पौधारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता जैसे कार्यों से जोड़ा जाए तो भी ये बेहतर होगा अंजलि जी, और हमारा एक अच्छा प्रयास भी हो सकता है। साथ ही सामुदायिक कार्यक्रमों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि जब कोई बच्चा एक पौधा लगाता है, किसी घायल पक्षी की मदद करता है, पानी बचाता है या अपने बुजुर्ग से मिली सीख को जीवन में अपनाता है, तब कशिश वह केवल एक अच्छा बच्चा नहीं बनता बल्कि प्रकृति का सच्चा मित्र बनता है।
1: बिल्कुल,
0: यही छोटे छोटे संस्कार आगे चलकर एक जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील समाज का निर्माण करते हैं। आदिवासी बच्चों की पारंपरिक सीख केवल श्रोता साथियों अतीत की विरासत नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: बिल्कुल,
0: प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की कला, सामूहिक जीवन का महत्व, मेहनत का सम्मान, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संस्कृति से जुड़ाव, ये सभी ऐसे मूल्य हैं जिनकी आज पूरे समाज को आवश्यकता है।
1: जी हाँ,
0: आधुनिक शिक्षा और तकनीक का स्वागत करते हुए भी हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जब बच्चे अपनी परंपराओं को समझेंगे कशिश, प्रकृति का सम्मान करेंगे और बुजुर्गों के अनुभवों से सीखेंगे, तभी वे एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान देंगे जहां विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल,
0: हम सब मिलकर यह संकल्प भी ले सकते हैं कि आदिवासी समाज की इस अनमोल धरोहर को हम सहेजेंगे, बच्चों तक पहुंचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। यही हमारी संस्कृति का सम्मान, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और एक समृद्ध भविष्य की सच्ची नींव होगी।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे कि साथियों, किसी भी समाज की असली पहचान उसकी इमारतों या तकनीक से नहीं होती बल्कि उसके संस्कारों और जीवन मूल्यों से होती है।
0: बिल्कुल,
1: आदिवासी समाज ने सदियों से अपने बच्चों को यह सिखाया है दोस्तों कि धरती केवल रहने की जगह नहीं बल्कि जीवन देने वाली माँ भी है।
0: बिल्कुल,
1: पेड़ पौधों, जल, जंगल और जीव जंतुओं के साथ संतुलित जीवन जीने की यह सोच आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकती है। ऐसे समय में साथियों, जब पर्यावरण संकट और सामाजिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब आदिवासी परंपराओं में छिपी सीख हमें टिकाऊ और संवेदनशील जीवन का रास्ता दिखाती है।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इन परंपराओं को केवल इतिहास का हिस्सा न माने बल्कि उन्हें वर्तमान और भविष्य की शिक्षा का भी हिस्सा बनाए।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को उनकी जड़ों, लोक संस्कृति, प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान से जोड़ना केवल उनकी पहचान को मजबूत करना नहीं होता कशिश, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और प्रकृति प्रेमी नागरिक बनाना भी है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम आज इस अमूल्य विरासत को सहेजने का प्रयास करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी अपनी संस्कृति पर गर्व करेगी और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण करेगी।
1: जी हाँ,
0: यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे अमूल्य विरासत है। श्रोता साथियों, जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होते बल्कि जीवन का सबसे बड़ा विद्यालय है। यहाँ हर पत्ता एक सीख देता है, हर नदी धीरे का संदेश सुनाती है, हर पेड़ हमें निस्वार्थ भाव से देना सिखाता है। आदिवासी बच्चों का बचपन इसी प्रकृति के गोद में खिलता है, जहाँ किताबों के साथ साथ कशिश, अनुभव भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आदिवासी बच्चों की पारंपरिक सीख और प्रकृति से जो जुड़ाव है उसके महत्व को हम सभी को समझना होगा।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी रही और हमने जाना कि किस प्रकार से जो आदिवासी संस्कृति की स्थानीय परंपरा है और जो बच्चों को बचपन से ही सीख दी जाती है वो हमारे बच्चों को हम कैसे दे सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसी ढेर सारी बातें रही। अब जैसा कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दे।
0: बिल्कुल।
2: चकरा

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
0: तो दोस्तों, हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आप कार्य सोचो है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
2: नाना अंजलि बुन हूँ था का
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थी जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोलो घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोलो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल रह हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है आदिवासी संस्कृति, पहचान और युवा शक्ति को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, भारत अनेक संस्कृतियों, भाषा और परंपराओं का देश है और इन्हीं विविधताओं में आदिवासी संस्कृति अपनी अलग पहचान रखती है।
0: जी हाँ।
1: ये संस्कृति केवल लोकगीतों, नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा तक सीमित नहीं है कशिश, बल्कि ये प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक जीवन, मेहनत और आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण भी है।
0: बिल्कुल
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आदिवासी संस्कृति, पहचान और युवा शक्ति को लेकर। जानेंगे कि किस तरह आज का युवा अपनी संस्कृति को बचाते हुए आधुनिक दौर में नई पहचान बना सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ आज भी हम करें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आदिवासी संस्कृति पहचान और युवा शक्ति को लेकर।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि गीत से पहले आपने जागृति जी बताया था कि हमारा देश भारत जो है वो अनेक संस्कृतियों और भाषाओं वाला देश है। यही श्रोता साथियों, अगर आपको बताएं कि आदिवासी संस्कृति किस प्रकार से हमारी धरोहर है, तो दोस्तों आदिवासी समाज जो है वो सदियों से ही प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीता आया है।
1: बिल्कुल,
0: उनके लोकगीत, उनके लोक नृत्य, त्योहार, रीति रिवाज, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान जागृति जी हमारी सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा है। श्रोता साथियों, हर त्योहार केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार और सामूहिक जीवन का संदेश भी देता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए हम देखते हैं कि इन परंपराओं को सहेज कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि पहचान केवल नाम से नहीं बनती, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और मूल्यों से बनती है।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, आज कई युवा आधुनिकता की दौड़ में अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आधुनिक बनना और अपनी पहचान को बनाए रखना दोनों साथ साथ चल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब युवा अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं कशिश, तो उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ता है, समाज में उनकी अलग पहचान बनती है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि किसी भी संस्कृति का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है। अगर युवा अपने बुजुर्गों से लोक कथाएं, लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, रीति रिवाज और जीवन मूल्यों को सीखेंगे, तो ये विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि युवा केवल दर्शक न बने, बल्कि अपनी संस्कृति के सक्रिय प्रतिनिधि भी जरूर बने।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। साथ ही श्रोता साथियों, आदिवासी समाज की कला और शिल्प विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि बांस, लकड़ी, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों से तैयार की गई वस्तुएं उनकी रचनात्मकता को दर्शाती है जागृति जी। इसी तरह औषधीय पौधों की जानकारी, पारंपरिक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का ज्ञान आज भी बेहद उपयोगी है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, यदि इन सभी कलाओं और ज्ञान को आधुनिक तकनीक से हम जोड़ दें, तो ये रोजगार के नए अवसर भी हमारे युवा साथियों के लिए पैदा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, जैसा कि हम आदिवासी संस्कृति को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने का सबसे मजबूत आधार है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शिक्षा का अर्थ अपनी संस्कृति को भूल जाना नहीं है श्रोता साथियों। एक शिक्षित युवा वही है जो आधुनिक ज्ञान के साथ अपनी भाषा, अपनी परंपराओं और अपने सामाजिक मूल्यों को भी सम्मानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब शिक्षा और संस्कृति साथ में चलते हैं, तब समाज का संतुलित विकास संभव हो पाता है।
0: जी हाँ साथियों, हम देखते हैं कि आदिवासी संस्कृति हमें सिखाती है कि जंगल, जल और जमीन जो है वो केवल संसाधन नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। आज पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है जागृति जी। ऐसे समय में आदिवासी समाज की जीवन शैली हम सभी के लिए एक प्रेरणा है।
1: बिल्कुल,
0: युवा यदि ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को अपना दायित्व समझने लगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि आज हस्तशिल्प, वन उत्पाद और जैविक खेती, सांस्कृतिक पर्यटन, लोक कला के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर भी उपलब्ध है। कशिश, अगर युवा साथी अपने पारंपरिक कौशल को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और डिजिटल माध्यमों से जोड़े, तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही डिजिटल युग में भी संस्कृति का प्रचार किया जा सकता है युवा साथियों। जैसे कि आज मोबाइल और इंटरनेट केवल मनोरंजन के साधन नहीं रह गए हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में जो हमारे युवा साथी हैं, वो सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी लोक कला, लोकगीत, संस्कृति और परंपराओं को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इससे जागृति जी संस्कृति का संरक्षण भी होगा और हमारी संस्कृति को नई पहचान भी मिलेगी।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आदिवासी संस्कृति के महत्व को लेकर, तो ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी आदिवासी संस्कृति, पहचान और युवा शक्ति को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जान पा रहे थे कि आदिवासी संस्कृति किस तरह से हमारी धरोहर है, हमें अपनी पहचान पर गर्व किस तरह से करना है, साथ ही युवा संस्कृति के सच्चे संरक्षक कैसे बन सकते हैं, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान को नई पहचान किस तरह से मिल सकती है, शिक्षा और संस्कृति का संतुलन क्या है, आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए अवसर को लेकर भी हमने बात की थी।
1: जी हाँ।
0: यही हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कशिश कि डिजिटल युग में संस्कृति का प्रचार भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हम देखते हैं कि आज का युवा केवल अपने भविष्य की चिंता नहीं करता बल्कि समाज के विकास में भी भागीदारी निभाता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण हो, पर्यावरण संरक्षण हो या सामाजिक जागरूकता। श्रोता साथियों, इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बताया जाता है कि जब युवा आगे बढ़ते हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है।
0: जी हाँ कशिश, हमारे श्रोताओं साथियों को हम ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सांस्कृतिक पहचान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। श्रोता साथियों, अपनी संस्कृति से जुड़ा व्यक्ति कभी भी अपनी पहचान को नहीं खोता है।
1: जी हाँ।
0: जो युवा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है कशिश, वे आत्मविश्वास के साथ हर चुनौतियों का सामना भी करते हैं और समाज के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। इसीलिए आधुनिकता को अपनाना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी परंपरा को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि श्रोता साथियों, आदिवासी संस्कृति केवल किसी एक समाज की धरोहर नहीं है बल्कि पूरे भारत की अमूल्य विरासत है। इसकी पहचान हमारे लोक जीवन, प्रकृति प्रेम, सामूहिकता, मानवीय मूल्यों में बसती है। दोस्तों, आज के युवाओं के पास जागृति जी ये सुनहरा अवसर है कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए शिक्षा, तकनीक और नवाचार के माध्यम से अपने समाज को एक नई दिशा दें।
0: बिल्कुल कशिश।
1: साथियों, याद रखिए कि जो युवा अपनी संस्कृति को समझता है वही अपने भविष्य को मजबूत बनाता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में हम सभी को मिलकर अपनी भाषा, अपनी परंपराएं, लोक कलाएं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और गर्व के साथ अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। साथियों,
0: बिल्कुल,
1: यही हमारी पहचान है, यही हमारी शक्ति है और यही एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक भारत की नींव है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि आदिवासी संस्कृति केवल किसी एक समुदाय की पहचान नहीं है बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य और जीवंत अध्याय है। जैसा कि हमने पहले भी हमारे श्रोता साथियों को बताया था, प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक जीवन, श्रम का महत्व, लोक कला, लोकगीत, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण, ये सारे जीवन मूल्य आज भी आदिवासी समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोताओं, आधुनिक विकास की दौड़ में ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी संस्कृति, भाषा, परंपराओं और ज्ञान को केवल संरक्षित ही ना करें बल्कि उनसे सीखने का भी प्रयास करें।
1: बिल्कुल।
0: वास्तविक प्रगति तो कशिश वही है जिसमें विकास और विरासत दोनों साथ चले। जब आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान के समान अवसर मिलेंगे तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहेगी, तभी समावेशी और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आदिवासी संस्कृति का सम्मान करेंगे, उसकी विविधता को अपनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों तक इस अनमोल धरोहर को गर्व के साथ पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जिस राष्ट्र की जड़ें अपनी संस्कृति में मजबूत होती है कशिश, उसका भविष्य भी उतना ही उज्जवल, समृद्ध और सशक्त होता है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि श्रोता साथियों, किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्कृति, उसकी पहचान और उसके युवा होते हैं। आदिवासी संस्कृति हमें प्रकृति से प्रेम, सामूहिक जीवन, सादगी और मानवीय मूल्यों का अनमोल संदेश देती है। जागृति जी, ये केवल अतीत की विरासत नहीं है बल्कि भविष्य की प्रेरणा है। आज आवश्यकता बस इस बात की है दोस्तों कि युवा अपनी भाषा, लोक कला, सांस्कृतिक मूल्यों को गर्व के साथ अपनाएं और आधुनिक शिक्षा, तकनीक और नए अवसरों का लाभ भी उठाते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जिस युवा को अपनी पहचान का ज्ञान होता है जागृति जी, वही आत्मविश्वास के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान देता है।
0: जी हाँ कशिश, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को हम बस यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम सभी इस अनमोल विरासत का सम्मान करें, इससे प्रेरणा लें और ऐसा भारत बनाएं जहाँ हर संस्कृति का सम्मान हो, जहाँ हर संस्कृति को समान सम्मान और हर समुदाय को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: बिल्कुल।
0: जब अपनी जड़ों का सम्मान होता है श्रोताओं, तभी राष्ट्र का भविष्य मजबूत होता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर हम सुनवाएं।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: सखियों वाले।
1: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
2: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारे आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
2: नमस्कार।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किमकी घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम घूमर हमरवारी अमर हित बुन ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाई बुनो आप सब हमली रिया हो आपू सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा अमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: होवे भाई बुनो लेने हाजिर थी गये हो कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथे मनीषा बुन आज आप कार्यक्रम में बुनो ते की बातचीत नो विषय है कि आप जो बुन है ई एना ना हपना ने उमर दीकीने पूरा ने करी एवं एड़ाने ने करवो सुवे किम के आपणे देखो हो कि घणी वक्त आपणी बोनने मय घणा कना हपना रहे हैं। अगर कोई मना केने के है कि तारू आ हपनू है तान पूरू कर ले अवडे भी टाइम है बस एम के है कि अब तो मुगड़ी थी गई हवे करीने हूँ करूँ तो आवी चीजे आपणे नथी करवी। आपणी बोनने आणी वातनो ध्यान राखवू है कि आपणी उम्र केटली भी हो आपणे कारे भी हीकवू बंद नथी करवू। हर उम्र में आपणे हर चीज हीकी शका।
0: होवे अंजली बोन तो आणा विषय माथे आपणे बोने खती घणा काणी वाते रिंगा अबर हमळा गीत ने मोरे करे आपणी वाती
1: तो बोने आप हमळ तरेसू आपडू रेडियो आपणी वाते वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, हर सेवा दान से नहीं होती, कुछ सेवाएं इंसानियत से होती हैं। हर मदद के लिए जेब का भरा होना जरूरी नहीं है, कई बार दिल का भरा होना भी काफी होता है। क्योंकि दोस्तों, एक सच्ची मुस्कान किसी का दर्द तो पूरी तरह नहीं मिटा सकती, लेकिन यह भरोसा जरूर दिला सकती है कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉग रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हो गई हूँ साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जहाँ हम जीवन के ऐसे विषयों पर बातचीत करते हैं जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे परिवार और पूरे समाज

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, हर सेवा दान से नहीं होती, कुछ सेवाएं इंसानियत से होती हैं। हर मदद के लिए जेब का भरा होना जरूरी नहीं है, कई बार दिल का भरा होना भी काफी होता है। क्योंकि दोस्तों, एक सच्ची मुस्कान किसी का दर्द तो पूरी तरह नहीं मिटा सकती, लेकिन यह भरोसा जरूर दिला सकती है कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉग रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हो गई हूँ साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जहाँ हम जीवन के ऐसे विषयों पर बातचीत करते हैं जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे परिवार और पूरे समाज को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। आज का विषय सुनने में बहुत सरल है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझ लिया जाए तो यह हमारे व्यवहार, हमारे समाज दोनों को बदल सकता है। आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है कि क्या मुस्कान बांटना भी एक सामाजिक सेवा है। बातें कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात कर रहे हैं कि क्या मुस्कान बांटना भी एक सामाजिक सेवा है। जी हाँ दोस्तों, जब भी सामाजिक सेवा की बात आती है तो हमारे मन में कुछ तस्वीरें उभरती हैं, जैसे कि किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करना, रक्तदान कर देना, पौधे लगाना, शिक्षा देना, बीमार व्यक्तियों की मदद करना या किसी जरूरतमंद की आर्थिक सहायता करना। दोस्तों, ये सभी कार्य निश्चित रूप से महान हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी उदास व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना भी समाज की सेवा हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, कभी आपने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी निराश इंसान का हौसला बढ़ाना, किसी बुजुर्ग से कुछ देर बैठकर बातें करना, किसी बच्चे की कोशिश की सराहना करना या किसी अजनबी का सम्मान पूर्वक अभिवादन करना भी सेवा का ही एक रूप है। आज हम इस विषय पर विचार और मंथन करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि मुस्कान केवल चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि मन की भाषा भी है। जी हाँ दोस्तों, मुस्कान वह भाषा है जिसे पढ़ने के लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिना शब्दों की भी अपनापन व्यक्त कर देती है। एक सच्ची मुस्कान कहती है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, तुम अकेले नहीं हो। आज जब लोग पहले से अधिक व्यस्त हैं, तनाव में हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तब एक सच्ची मुस्कान कई बार दवा से पहले असर कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसका प्रभाव अनमोल होता है। जो मुस्कान बांटता है वो केवल चेहरा नहीं वातावरण भी बदल देता है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग मुस्कुराना ही भूल गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, आज का जीवन जो है वो तेज गति से बढ़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक काम, जिम्मेदारियां, सिंचाई, मोबाइल, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की चिंता, इन सब के बीच मुस्कुराना जैसे एक आदत नहीं बल्कि एक दुर्बल घटना बन गया है। हम कई बार अपने ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से मुस्कुराकर बात नहीं करते। क्या दोस्तों ये केवल व्यस्तता है या हम फिर धीरे धीरे भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं? ये हमारे लिए सोचने की बात है। यही जरा सोचिएगा दोस्तों कि यदि सुबह घर में हर व्यक्ति एक दूसरे का मुस्कुराकर अभिवादन करे, यदि माता पिता बच्चों की छोटी सी सफलता पर मुस्कुरा दे, यदि बच्चे अपने दादा दादी के साथ बैठकर हंसे, तो घर का वातावरण कितना बदल सकता है। खुशी हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं आती है दोस्तों, कई बार वह छोटे व्यवहारों में छुपी होती है। हमारे गाँव में पहले चौपाले थी, लोग बैठते थे, हंसते थे, सुख दुख बांटते थे। आज जीवन बहुत बदल गया है, लोग पास रहते हुए भी दूर हो गए हैं। ऐसे समय में यदि हम पड़ोसी से मुस्कुराकर मिलें, दुकानदार ग्राहक का सम्मान से स्वागत करे, शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहन दे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, किसान, मजदूर सब एक दूसरे से आत्मीयता से मिले, तो समाज का वातावरण अधिक सकारात्मक बन सकता है। क्योंकि बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि कभी कभी सबसे बड़ी सामाजिक सेवा किसी अनजान व्यक्ति को यह एहसास दिलाना होती है कि इस दुनिया में अभी भी अपनापन बाकी है। जी हाँ, मुस्कान वह दीपक है जो पहले अपने चेहरे को रोशन करती है, फिर दूसरों के जीवन को। तो दोस्तों, बातें कार्यक्रम में आज हमारी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त अंजलि के साथ में।

0: दिया।
1: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से हमारे गांवों में पहले चौपाले लगती थी, लोग बैठते थे, हंसते थे, सुख दुख बांटते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। जी हाँ श्रोता साथियों, अगर हम इसी तरीके से हमारे व्यवहार में इन सारी चीजों को लाते रहे तो हमारे बच्चे भी यही सारी चीज सीखेंगे। बच्चे शब्दों से कम व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। यदि वे अपने घर में मुस्कुराते हुए चेहरे देखेंगे, सम्मानजनक बातचीत सुनेंगे तो वे भी वैसा ही समाज बनाएंगे। लेकिन यदि हर समय तनाव, गुस्सा और शिकायत देखेंगे तो वही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। कई बुजुर्गों को बहुत कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए थोड़ा समय, थोड़ा सम्मान और एक अपनापन भरी मुस्कान। कई बार 5 मिनट की बातचीत और एक स्नेह भरी मुस्कान उनके पूरे दिन को खुशियों से भर सकती है। जी हाँ श्रोता साथियों, आज बहुत से युवा जो हैं, वो भीतर से संघर्ष कर रहे हैं। किसी को पढ़ाई का दबाव है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को भविष्य का डर। ऐसे समय में यदि हम एक दूसरे का मजाक उड़ाने के बजाय एक मुस्कान और एक हौसला देने वाला वाक्य कहें, तुम कर सकते हो, तो शायद किसी के जीवन में नई उम्मीद जाग जाए। जी हाँ, मुस्कुराना सचमुच बहुत बड़ी सेवा है, यदि वह सच्चे मन से की गई हो तो। क्योंकि सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं होता, सेवा का अर्थ होता है दोस्तों किसी के जीवन में थोड़ा सुकून जोड़ना, थोड़ी उम्मीद जगाना, थोड़ा अपनापन देना। यदि हमारी मुस्कान किसी का डर कम कर दे, किसी का अकेलापन हल्का कर दे या किसी को फिर से मुस्कुराने की वजह दे दे, तो यह भी समाज की सेवा ही है। इसलिए आज से ही हमें एक छोटा सा संकल्प लेना होगा कि हम हर दिन कम से कम 3 लोगों से मुस्कुरा कर मिलेंगे, किसी की मेहनत की सच्चे मन से सराहना करेंगे, किसी उदास व्यक्ति से 2 मिनट बात करेंगे, शिकायत से पहले धन्यवाद कहने की आदत डालेंगे। फिर देखिए दोस्तों, यह छोटा सा बदलाव केवल आपके चेहरे पर ही नहीं, पूरे वातावरण पर असर डालेगा। जी हाँ, समाज केवल बड़ी योजनाओं और बड़े कार्यों से नहीं बदलता, बल्कि छोटे मानवीय व्यवहारों से भी बदलता है। एक सच्ची मुस्कान, एक सम्मानजनक अभिवादन, एक हौसला बढ़ाने वाला वाक्य और एक अपनापन भरा व्यवहार, ये सब ऐसे छोटे बीज हैं दोस्तों, जिनसे विश्वास, प्रेम और सहयोग का विशाल वृक्ष तैयार होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज अधिक संवेदनशील, खुशहाल और एक दूसरे का साथ देने वाला बने, तो इसकी शुरुआत अपने चेहरे की मुस्कान और अपने व्यवहार की गर्मजोशी से करनी होगी। क्योंकि मुस्कुराने में केवल एक पल लगता है, लेकिन उसकी याद किसी के दिल में वर्षों तक रह सकती है। दुनिया को हमेशा बड़े बदलावों की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, कई बार उसे केवल ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो बिना किसी स्वार्थ के मुस्कान बांटना जानते हो। जी हाँ, इसलिए हम सभी को आज से ही जहाँ भी हम जाएं, अपने साथ केवल अपनी पहचान नहीं बल्कि अपनापन, सम्मान और एक सच्ची मुस्कान भी लेकर जाएं। क्योंकि हो सकता है कि आपकी यही मुस्कान किसी थके हुए मन को नई उम्मीद दे दे, और यदि ऐसा होता है तो निसंदेह दोस्तों, यह भी समाज की सबसे सुंदर और सबसे सरल सामाजिक सेवाओं में से एक है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जाना कि क्या वाकई में मुस्कान बांटना भी एक सामाजिक सेवा है। बातें ढेर सारी हो गई हैं, अब समय हो चला है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी कि जब हम समाज को बदलने की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर बड़े अभियानों, बड़ी योजनाओं और बड़े संसाधनों पर जाती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि समाज केवल बड़े कार्यों से नहीं बल्कि लाखों छोटे छोटे अच्छे व्यवहारों से भी बदलता है। एक व्यक्ति का विनम्र स्वभाव, दूसरे का सम्मान, तीसरे का सहयोग और चौथे की सच्ची मुस्कान, यही सभी मिलकर एक संवेदनशील समाज की नींव रखते हैं। इसलिए मुस्कान को कभी साधारण मत समझिए दोस्तों, क्योंकि वह इंसानियत की सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली भाषा है। आज दुनिया में लोगों के पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन सुकून पहले जितना नहीं। लोग एक दूसरे के बहुत करीब रहते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के आपका हाल चाल पूछ ले, सम्मान से बात कर ले या मुस्कुराकर आपका स्वागत कर ले, तो मन में यह विश्वास पैदा होता है कि दुनिया में अभी भी अपनापन बाकी है। यही विश्वास समाज को टूटने से बचाता है और लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि आपके पास देने के लिए धन नहीं है तो सम्मान दीजिए, यदि समय कम है तो भी दो स्नेह भरे शब्द बोलिए, और यदि कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक सच्ची मुस्कान जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए वह केवल एक मुस्कान हो लेकिन किसी दूसरे के लिए वही मुस्कान पूरे दिन की हिम्मत, जीने की नई उम्मीद और बस इस बात का विश्वास बन जाए कि दुनिया में अच्छाई अब भी जीवित है। यही छोटी सी शुरुआत एक बड़े और मानवीय समाज की पहचान बन सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: कशिश आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है आजादी की आवाज भारत छोड़ो आंदोलन से मिलने वाले सिख को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, आज हम इतिहास के उस दौर में चले गए हैं जब भारत की धरती पर आजादी की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो चुकी थी।
0: जी हाँ,
1: वह समय था जब देश के कोने कोने से एक ही पुकार सुनाई दे रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जी हाँ श्रोता साथियों, आज का हमारा विषय है आजादी की आवाज भारत छोड़ो आंदोलन से मिलने वाली सीख। भारत छोड़ो आंदोलन कशिश केवल इतिहास की घटना नहीं था, यह भारतीय जनता के साहस, एकता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के संकल्प का प्रतीक भी था।
0: बिल्कुल,
1: इस आंदोलन ने यह दिखाया कि जब आम जनता किसी बड़े उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाती है तो उसकी आवाज को दबाना आसान नहीं होता।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले हम एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डे

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि बातचीत का विषय जुड़ चुका है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों आजादी की आवाज भारत छोड़ो आंदोलन से मिलने वाली सीख को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी, भारत का स्वतंत्रता जो संग्राम है वो हमारे इतिहास का वह गौरवपूर्ण अध्याय है, जिसमें असंख्य वीरों ने अपने साहस, त्याग और बलिदान से देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया था। दोस्तों, इसी स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन का विशेष महत्व है। हम देखते हैं कि वर्ष 1942 में शुरू हुआ यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता के निर्णायक संघर्ष का एक प्रतीक बना।
1: बिल्कुल,
0: इस आंदोलन ने अंजलि जी पूरे देश में स्वतंत्रता की एक ऐसी आवाज पैदा की जिसे दबाना अंग्रेजी शासन के लिए संभव नहीं हुआ था।
1: बिल्कुल कशिश, साल 1942 उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। देश लंबे समय से स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अनेक स्वतंत्रता सेनानी लगातार अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे।
0: जी जी।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया, जबकि भारतीयों ने उनकी सहमति नहीं ली थी। इससे देश में असंतोष बढ़ गया। इसी परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करने की मांग को निर्णायक रूप से लेने का फैसला किया।
0: बिल्कुल,
1: 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। महात्मा गांधी ने लोगों से स्पष्ट आह्वान किया, करो या मरो। इसका अर्थ हिंसा करना नहीं था, बल्कि आजादी के लक्ष्य के लिए पूरी दृढ़ता और साहस के साथ संघर्ष करना था।
0: बिल्कुल
1: कशिश, 9 अगस्त 1942 की सुबह अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों को लगा कि नेताओं को गिरफ्तार करके आंदोलन को रोक लिया जाएगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। बिल्कुल, नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन आम जनता के हाथों में चला गया। श्रोता साथियों, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े।
0: बिल्कुल,
1: कई स्थानों पर लोगों ने जुलूस निकाले, सभाएं की और अंग्रेजी शासन का विरोध किया। कशिश, भूमिगत कार्यकर्ताओं ने गुप्त रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाया। अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे एक बड़ी बात सामने आई कि आजादी का संघर्ष केवल कुछ नेताओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि पूरे देश की जनता का आंदोलन बन चुका था।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें केवल बड़े नेता ही नहीं, बल्कि किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं, व्यापारी और आम नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल थे।
1: बिल्कुल,
0: अनेक युवाओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को आगे बढ़ाया और महिलाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। अंजलि जी,
1: जी जी,
0: जैसा कि आपने बताया कि अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर साहस और देशभक्ति का परिचय दिया था।
1: जी जी।
0: दोस्तों, इस घटना ने देशवासियों को नई ऊर्जा और उत्साह के रूप में आगे बढ़ाया। हम देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हमें सबसे पहले सीख एकता की ही देता है।
1: जी,
0: क्योंकि भारत अनेक भाषा, धर्मों, जातियों और संस्कृतियों वाला देश है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दोस्तों लोगों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर देश की स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
1: जी जी।
0: और यही एकता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय की सबसे बड़ी शक्ति बनी। अंजलि जी, आज भी देश की प्रगति के लिए जरूरी है कि हम आपसी भेदभाव और वैमनस्य को छोड़कर एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करें।
1: बिल्कुल कशिश, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसकी आवाज शहरों तक सीमित नहीं रही। गाँव के लोगों ने भी अपने स्तर पर अंग्रेजी शासन का विरोध किया। किसानों, युवाओं और ग्रामीण जनता ने आंदोलन को मजबूती दी।
0: बिल्कुल,
1: हमारे ग्रामीण समाज के लिए यह इतिहास, श्रोता साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि देश के निर्माण में गांवों और आम लोगों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही।
0: जी
1: आज भी जब हम अपने गाँव की किसी समस्या को लेकर पंचायत में आवाज उठाते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद के लिए समुदाय को जोड़ते हैं या किसी सामाजिक बुराई के खिलाफ मिलकर काम करते हैं कशिश, तो उसमें उसी सामूहिक भावना की झलक दिखाई देती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम कह सकते हैं कि गांव और आम जनता की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से स्वतंत्रता संग्राम भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातें हमारी आगे ऐसे ही जारी रहेंगी और भी, लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि अंजलि जी, भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर हम बात कर रहे हैं, और गीत से पहले जैसा कि हम जान पाए थे कि 8 अगस्त 1942 का वो दिन था जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
1: बिल्कुल
0: साथियों, अगर आपको इसी के आगे बात बताएं तो भारत छोड़ो आंदोलन हमें युवाओं की शक्ति और जिम्मेदारी का भी संदेश देता है। अंजलि जी, उस समय अनेक विद्यार्थियों और युवाओं ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आज के जो हमारे युवा साथी हैं उनके सामने स्वतंत्रता प्राप्त करने की चुनौतियां नहीं है, लेकिन देश को विकसित और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी जरूर है। साथियों, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में युवा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी सीख यही है कि एकता में शक्ति होती है। उस समय देश में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग क्षेत्रों और समुदाय से आने वाले लोग थे, लेकिन स्वतंत्रता के उद्देश्य ने उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया। आज हमारे सामने भी कई नई चुनौतियां हैं। स्वच्छता, शिक्षा, पानी की समस्या, बाल विवाह, नशा, बेरोजगारी, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक भेदभाव। छोटा साथियों, इन समस्याओं का समाधान अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। जब पूरा समुदाय एक साथ आगे आता है तब बदलाव तेजी से आता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि एक व्यक्ति की आवाज शुरुआत हो सकती है, लेकिन सामूहिक आवाज बदलाव ला सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन हमें साहस की सीख देता है।
0: जी जी,
1: अंग्रेजी शासन बहुत शक्तिशाली था, उनके पास प्रशासन, पुलिस और कानून की ताकत थी। इसके बावजूद भारतीयों ने अपने अधिकारों की आवाज उठाने का साहस किया। आज हमारे सामने परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन साहस की जरूरत आज भी है।
0: जी जी,
1: अगर गांव में किसी बच्चे को स्कूल जाने से रोका जा रहा है तो हमें आवाज उठानी होगी। श्रोता साथियों, अगर किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप नहीं रहना चाहिए। अगर सार्वजनिक स्थान गंदा है तो केवल शिकायत करने के बजाय सफाई की पहल भी करनी होगी।
0: बिल्कुल,
1: साहस का अर्थ होता है कशिश लड़ाई करना नहीं, बल्कि सच्चे साहस का अर्थ है सही बात के लिए शांति पूर्ण और जिम्मेदारी के साथ खड़ा होना।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि इस आंदोलन से एक बहुत बड़ी सीख ये भी हमें मिली है कि महिलाओं की भागीदारी और समानता कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अंजलि जी, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था।
1: बिल्कुल,
0: इससे दोस्तों ये बात सिद्ध हो जाती है कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी हमें महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के समान अवसर देने चाहिए।
1: जी जी,
0: क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन हमें ये भी सिखाता है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। स्वतंत्र भारत हमें अपने अधिकारों के साथ साथ ही अपने कर्तव्यों को भी समझना सिखाता है। देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कानून का पालन करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना
1: जी जी,
0: और समाज में भाईचारा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चला और गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, उन्होंने लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी, लेकिन हिंसा का रास्ता अपनाने से बचने की सीख भी थी।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया और मोबाइल के दूर में छोटे से बात को लेकर कशिश हम देखते हैं कि विवाद का रूप ले लिया जाता है।
0: जी जी,
1: किसी पोस्ट या संदेश को बिना जांचे आगे भेज दिया जाता है, गलत जानकारी या किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना भी समाज में तनाव पैदा कर सकता है।
0: जी बिल्कुल,
1: आज के समय में भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण सीख यही है कि अपनी बात मजबूती से कहिए, लेकिन दूसरों के सम्मान को बनाए रखिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि साथियों आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमें अपने विचार व्यक्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, अपने भविष्य का निर्माण करने की स्वतंत्रता पूरी है। ये स्वतंत्रता अंजलि जी हमें आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष और बलिदान है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों, और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन केवल इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत है।
1: बिल्कुल,
0: इसकी आवाज हमें आज भी बताती है दोस्तों कि जब लोग एकजुट होकर किसी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में युवाओं और विद्यार्थियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। युवा किसी भी देश की ऊर्जा होते हैं। आज भारत की युवा पीढ़ी के सामने शिक्षा, रोजगार, डिजिटल दुनिया और नई तकनीक के अवसर हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अवसरों के साथ जिम्मेदारियां भी हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि युवा केवल अपने भविष्य के बारे में न सोचे, बल्कि अपने गाँव, समाज और देश के भविष्य के बारे में भी सोचे।
0: जी जी,
1: एक युवा अगर अपने गाँव के 10 बच्चे को पढ़ने के लिए करता है, किसी पर्यावरण अभियान में शामिल करता है या लोगों को सरकारी योजनाओं की सही जानकारी देता है, तो यह भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आजादी श्रोता साथियों हमें संघर्ष के बाद मिली है, इसलिए आजादी का सम्मान केवल तिरंगा फहराने या राष्ट्रगान गाने तक सीमित नहीं होना चाहिए।
0: जी जी,
1: आजादी का वास्तविक सम्मान तब होता है कशिश, जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे। हम पानी बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, सार्वजनिक पति की रक्षा करेंगे, बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत को महत्व देंगे और अपने गांव को बेहतर बनाने में योगदान देंगे। श्रोता साथियों, देश केवल सरकार से नहीं बनता, देश नागरिकों की जिम्मेदारी से भी बनता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं, ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,
0: तो दोस्तों आप बने रहिएगा, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: क्या कर?

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहूंगी कि हमारा सामुदायिक रेडियो भी एक तरह से आवाज को आवाज से जोड़ने का माध्यम है।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
0: श्रोता साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन ने दिखाया था कि विचारों और संदेशों की ताकत कितनी बड़ी होती है। उस समय समाचार और संदेश फैलाने के लिए लोगों ने अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया। आज हमारे पास रेडियो, मोबाइल और इंटरनेट जैसे माध्यम है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम सही और उपयोगी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी आवाज किसी को डराने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए हो। हमारी बात किसी को बांटने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए हो। हमारा संवाद केवल समस्याएं बताने तक सीमित न रहे, बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाए। श्रोता साथियों, अगर आज भारत छोड़ो आंदोलन के संदेश को अपने गांव की भाषा में समझें और उनका अर्थ हम जानें, तो उसका अर्थ होगा जहां अज्ञान है वहां शिक्षा की आवाज उठाए, जहां गंदगी है वहां स्वच्छता की शुरुआत करें, जहां भेदभाव है वहां समानता की बात करें, जहां बच्चों की पढ़ाई रुक रही है वहां उन्हें स्कूल तक पहुंचाएं, जहां महिलाएं अपने अधिकारों से अनजान है वहां उन्हें जानकारी दें, जहां प्रकृति का नुकसान हो रहा है वहां संरक्षण की पहल करें। यही आवाज जो है वो आज के समय के लिए बहुत जरूरी है, और आज के समय यही हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।
1: अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन हमें एकता, साहस, त्याग, आत्मविश्वास के साथ साथ अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की सीख भी देता है। दोस्तों, ऐसे में आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।
0: बिल्कुल,
1: हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें, देश की एकता को मजबूत करें और समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना फैलाएं।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, भारत छोड़ो आंदोलन की व आजादी की आवाज आज भी हमें पुकारती है कि देश की स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि एक महान जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, इस आंदोलन की एक अनोखी विशेषता ये थी कि अंग्रेज सरकार ने शुरुआत में ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था।
0: बिल्कुल,
1: इसके बावजूद भी आंदोलन कभी रुका नहीं अंजलि जी। स्थानीय नेताओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने स्वयं आगे बढ़कर आंदोलन को जारी रखा। इससे श्रोता साथियों ये पता चलता है कि सच्चा जन आंदोलन केवल किसी एक नेता पर निर्भर नहीं होता।
0: जी जी,
1: आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने समाचार पत्रों और सार्वजनिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसे समय में कुछ लोगों ने भूमिगत रहकर संदेश पहुंचाने का काम किया अंजलि जी। साथ ही उषा मेहता और उनके साथियों द्वारा चलाया गया, कह सकते हैं कि कांग्रेस रेडियो विशेष रूप से उल्लेखनीय था उसके माध्यम से।
0: जी जी,
1: हम देखते हैं कि इस रेडियो के माध्यम से देशवासियों तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी खबरें और संदेश जो है वो पहुंचाए गए। यह संचार की शक्ति और साहस का एक अनोखा उदाहरण था।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात आती है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरे देश को यह विश्वास दिलाया कि आम जनता की एकजुट शक्ति किसी भी बड़े परिवर्तन की नींव बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: 1942 की वह आवाज केवल अंग्रेजों के भारत छोड़ो की मांग नहीं थी श्रोता साथियों, बल्कि वह आवाज आत्मसम्मान की थी, अधिकारों की थी और अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करने की थी।
1: जी जी,
0: आज हमें उसी भावना को नए रूप में जीवित रखना है। आज हमें किसी विदेशी शासन से लड़ाई नहीं करनी। आज हमारी लड़ाई अशिक्षा, गरीबी, भेदभाव, गंदगी, नशे, अंधविश्वास, पर्यावरण की अनदेखी और सामाजिक असमानता से जुड़े चुनौतियों से है।
1: बिल्कुल,
0: भारत छोड़ो आंदोलन हमें यह याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी आवाज, एक छोटा सा कदम और एक छोटी और कह सकते हैं कि कुछ लोगों का एकजुट होने की कोशिश करना ही बड़े लोगों की शुरुआत बन सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
0: श्रोता साथियों, आइए आजादी के सेनानियों को केवल याद न करें बल्कि उनके मूल्यों को भी अपने जीवन में उतारें।
1: बिल्कुल,
0: एकता रखें, जिम्मेदारी निभाएं, सही बात के लिए आवाज उठाएं और अपने गांव, समाज और देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों, तो आपसे कहना चाहेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव शहरों तक सीमित नहीं रहा था। गांव में भी लोगों ने सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार, जन जागरण के माध्यम से अपनी भूमिका निभाई थी।
0: जी जी,
1: इससे साथ ही स्वतंत्रता संघर्ष वास्तव में व्यापक जन संघर्ष बन गया था। कुछ क्षेत्रों में तो अंजलि जी, लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के स्थान पर स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास किया था।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, ये केवल विरोध नहीं था बल्कि भारतीय भारतीयों की ये भावना भी दर्शाती थी कि वे स्वयं अपने देश का शासन चलाने में सक्षम हैं। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजी शासन के सामने ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारत पर लंबे समय तक शासन करना आसान नहीं रहेगा।
0: जी हाँ,
1: स्वतंत्रता तुरंत प्राप्त नहीं हुई, लेकिन 1942 का आंदोलन स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं कि किस तरीके से आजादी का जो ये आंदोलन हुआ था वो हमें कितनी सीख देता है, इससे हम क्या क्या सीख अपने जीवन में उतार सकते हैं। बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर गीत से पहले भी ढेर सारी बातें हम आपसे कर ही रहे थे।
1: बिल्कुल।
0: और हमने जाना था कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की और ग्रामीण भारत की क्या भागीदारी रही थी इसमें। अब यही अंजलि जी, अगर बात करें संचार व्यवस्था के महत्व की, तो श्रोता साथियों, रेलवे, डाक और तार जैसी औपनिवेशिक व्यवस्था उस समय शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी।
1: बिल्कुल।
0: आंदोलन के दौरान इन व्यवस्थाओं को लेकर विरोध की घटनाएं भी हुई। इससे ये स्पष्ट हुआ कि किसी भी बड़े आंदोलन में संचार और सूचना का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है।
1: जी जी।
0: साथ ही श्रोता साथियों, आज हम देखते हैं कि भारत छोड़ो का अर्थ है अंग्रेजों को देश से बाहर करना नहीं, बल्कि आज हमें उन बुराइयों को भारत को छोड़ो कहना चाहिए जो देश की प्रगति में बाधा बनती है। जैसे कि भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, भेदभाव, नशाखोरी, पर्यावरण की उपेक्षा और सामाजिक वैमनस्य। अंजलि जी, यही स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को आधुनिक समय में सार्थक श्रद्धांजलि के रूप में सामने आया होगा।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही अब बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास हमें केवल बीते हुए समय की याद नहीं दिलाता है श्रोता साथियों, बल्कि वर्तमान में अपनी भूमिका को समझने का अवसर भी देता है।
0: जी जी।
1: 1942 में देश के सामान्य नागरिक ने यह साबित किया कि जब लोगों के भीतर अपने अधिकारों, सम्मान और बेहतर भविष्य की इच्छा जागती है कशिश, तो कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, उनके संकल्प को लंबे समय तक रोक ही नहीं सकती है।
0: जी जी।
1: उस दौर के संघर्ष में अनेक लोगों ने अपने सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को रखा था और अपने योगदान से स्वतंत्रता की राह को मजबूत बनाया। आज हमारे सामने परिस्थितियां अलग हैं। हमारे पास स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी है।
0: बिल्कुल।
1: आज देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्वरूप भी बदल गया है। अब राष्ट्र निर्माण का अर्थ केवल श्रोता साथियों बड़े आंदोलन का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि अपने देश के अपने दैनिक जीवन में जिम्मेदारी निभाकर अच्छा नागरिक बनना भी है।
0: जी हाँ।
1: जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, गांव की समस्याओं को कशिश मिलकर हल करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति का साथ देते हैं, तब हम अपने तरीके से देश को मजबूत कर रहे होते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय है जिसने देशवासियों को स्वतंत्रता के प्रति अटूट विश्वास और आत्मसम्मान की भावना को मजबूत किया।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि जब जनता एकजुट होकर किसी महान उद्देश्य के लिए संघर्ष करती है तो कोई भी शक्ति उसके संकल्प को लंबे समय तक दबा नहीं सकती।
1: जी जी।
0: आज श्रोता साथियों, इस आंदोलन से केवल इतिहास जानने की नहीं बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा हम सभी को लेनी चाहिए। यदि 1942 में हमारे पूर्वजों ने विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई थी श्रोता साथियों, तो आज हमें अशिक्षा, भेदभाव, भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए।
1: जी जी।
0: इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी सीख यही है कि आजादी केवल प्राप्त करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे जिम्मेदारी, एकता और अच्छे नागरिक आचरण से सार्थक बनाने का संकल्प हमें लेना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब हम सभी मिलकर एक मजबूत, शिक्षित, समतामूलक और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम स्वतंत्रता के महत्व को समझे,
0: बिल्कुल
1: अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी पहचाने और समाज में सहयोग, समानता और सद्भाव की भावना को मजबूत करें।
0: बिल्कुल।
1: 1942 की आवाज ने देश को स्वतंत्रता की दिशा दिखाई थी और आज वही इतिहास हमें बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देता है। हमारी सोच में जिम्मेदारी हो, हमारे व्यवहार में इंसानियत हो और हमारे प्रयासों में कशिश समाज के कल्याण की भावना भी हो, यही आजादी की आवाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा सार्थक तरीका होगा।
0: बिल्कुल।
1: आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसे मजबूत और सार्थक बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी रही और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी जी।
0: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे साथियों को बता दें।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा बागर रेडियो 90.9। श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: नमस्कार।
0: साथी दोस्तों आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं और आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोहका बलाई से। फिल्म का नाम है हमराज, गीत के बोल ही तुम अगर साथ देने का वादा करो। इस गीत की फरमाइश करता है उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार जंगेल, आरुषि जंगेल, नंदिनी जी जंगेल। सुगरी कला से जुड़ना चाह रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, अदिति जी जंगेल और अंजलि जी जंगेल। जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं अरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इस गीत की अनुरोध करता है दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशिष्टा जा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही तुम अगर साथ देने का वादा करो। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, फरमाइश का पहला गीत तो हमने सुनी लिया है, अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जनकपुरी सहारनपुर से। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, गीत की बोल है चुरा के दिल मेरा गुरिया चली। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है जॉन टिकिस्टो, रोजी टिकिस्टो, पॉल टिकिस्टो, विलेज टिकिस्टो। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं यूपी से, आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही है जौनपुर से इर्शाद अहमद अंसारी, कामरान इर्शाद, अरमान इर्शाद, नवीद इर्शाद, अजरा तबुस्सम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गंजूडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिक शेख, अमन अफरीदी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही चुरा के दिल मेरा गुरिया चली। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा वागा रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, अभी हमने कुमार सोनू और अलका जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। फिल्म का नाम है वारिस। गीत के बोल ही, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और मनमोहन सिंह ने। इस गीत के अनुरोध करता है राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला खटक चंद्रनगर से जुड़ रही हैं। सुरेश डोमे, शालिनी जी डोमेन लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं। डोली और प्रभा जी इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं। चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर इसे भी जुड़ रहे हैं। गंजडुरवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है हीरो, गीत के बोल ही तू मेरा जानू है। इस गीत की फरमाइश करता है रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे बक्सर शहर से फातिमा नाज, बीबी अंसारी, डब्लू अंसारी जी। इस गीत के अनुरोध करता है रायगढ़ बिहार से उमा राज, दीपक उमा, रमेश उमा, जगदीश उमा और कमल उमा। खड़वा से जुड़ना चाह रहे दुर्गा कुमारी, राकेश ताई जी। डुमराव से जुड़ रही लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही तू मेरा जानू है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल ही ये गलिया ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सिद्धार्थ गुड़ानी, अचनाताई गुड़ानी, प्रसिद्धि जी, हीरामन शिंदे, प्रतिभाजी गुड़ानी, महेश राम टेके जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधांशी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। अंबाला हरियाणा से जुड़ रहे रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर जी, प्रकाश राहुल, प्रियंका नमद, गुरशब्द गुरकीरत सिंह राहुल और विजेंद्र जी जान। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही ये गलिया ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। फिल्म का नाम है प्रेम रोग और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भद्रावती से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अब्दुल लोहेवाला, शाहिदा शेख, शाहिल शेख, अब्दुल्ला जी शेख। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं संगमुंगी से बाबा साहेब कणक्कर, साकरबाई कणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणेश्वरी और कणक्कर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। सलार बेलगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे हैं पेशजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। मराठवाड़ा से जुड़ रहे हैं समित मशरूम, साइना हसन, अगजाना जिया, आफिया और इब्राहिम जी और रामभाव तनवी जी। इस गीत के अनुरोध करता है जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरानी शाद, अरमानी शाद, नवीद इरशाद, अजात अबुस्सम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है मुबारका सिकंदर, गीत के बोल हैं सलाम इश्क। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है मास्टर विट्ठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। धनुरी तेलीवाला से जुड़ रही हैं निसार सलमानी, नौसा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ना चाह रही हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं दिल्ली से राज खोरवाल, रानी खोरवाल, प्रकाश जी खोरवाल। पुराना तालाब ढुमराव से जुड़ रही हैं वली उल्ला अंसारी, उस्मान आस अंसारी, शबनम बानू। जेल रोड बक्सर से जुड़ रही हैं राज एडी अंसारी, फातिमा राज। और छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं सतीश अनिजा और बिमला जी अनिजा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपर्णव जी नामदेव। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं सलाम इश्क। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वागत है श्रोता साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते ही हैं कि फरमाइशों का सिलसिला हमारा आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुत करता मनीषा पटेल।

बनारस से श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, अब्दुल मजिद अंसारी, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी जी, आफिया परवीन जी। इसी बीच उत्तर प्रदेश से दोस्त जुड़ रहे हैं जो इसी गीत को सुनना चाहते हैं, मास्टर किल्लू परवेज बेगम, इमरानानाथ, नाजिद शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद मैं फिर से जुड़ना चाहूंगी आप सभी के साथ और बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। श्रोता साथियों, फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम में फिर से शुरू हो चुका है, हमारा आपके साथ बना हुआ है। इसी बीच बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, बताना चाहूंगी उदयपुर से। फिल्म का नाम है बेवफा, गीत के बोल है एक दिलरुबा है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, सुनना चाह रहे सत्येंद्र नरेश चौहान, जशवर्धन मेगारिया जी, संत्यम मीणा जी, शिवम संजीव, कमलेश जी। इसी बीच घाटोल से हैं कमलेश जयपुरा, रोहित वजेंद्र, अरुण गणेश लाल जी। तलवाड़ा से जुड़े जसवंत जी, संजय, अखिलेश, हेमराज मीणा जी, चरण सिंह, श्याम प्रसाद जी। पाड़ी कला से जुड़ना चाह रहे हैं हेमंत टेलर, पुष्पा कुमार, आशाराम, रमेश लाल, प्यारे लाल, श्याम लाल, घनश्याम, राधेलाल जी, लाला राम, अरविंद जी, राहुल, जसवंत और घमंडी लाल जी। और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। और भी श्रोता साथी श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, एड नाशिद शेख, नाजन नाशिद, साजिद शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाल मुजावर जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक दिल रुबा है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा है, ढेरों फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से आ ही रही हैं साथियों, इसी बीच आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अभी हमारे कार्यक्रम में नए नए जुड़े हैं और आप भी अपने फरमाइश के गीत हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं साथियों, तो ज़रूर पहुँचा सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। साथियों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, बताना चाहूंगी, 9414082643। इसके माध्यम से श्रोता साथियों, आप हमें SMS करिए, लिखिए फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं, वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भी भेज सकते हैं आप हमें। और वागर रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम आपकी फरमाइश के माध्यम से हम आपको ही आपके पसंदीदा नगमों से रूबरू करवाएंगे श्रोता साथियों। तो जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला चल ही रहा है, इसी बीच अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। अगली फरमाइश आई है मस्तान पुन्ना जंक्शन से, फिल्म का नाम है दोस्तों, बताना चाहूंगी, गीत के बोल हैं, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, और फिल्म का नाम है तहलका। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मस्तानपुड़ा से, अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं वीना मस्किन, आशीष रजा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशुकुर, रिदान खुराना जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पाड़ी कला से जुड़ रहे हैं हेमंत टेलर, आशा राम जी, रमेश लाल, प्यारे लाल, श्याम लाल, घनश्याम, राधेलाल, लाला राम जी, अरविंद जी। और भी दोस्त हैं जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। घाटोल से हमारे श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, सतराम, आशा राम जी, हरियाली लाल जी, हेमंत, आकाश जी, देवेश जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं विपिन शर्मा तलवाड़ा से, हरेंद्र विकास, दलपत जी, श्यामलाल जी, रामलाल जी, पंकज जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत को, गीत के बोल हैं, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहिए आपका अपना वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं घाटोल से दलपत विकास जी, श्यामलाल रामलाल जी, पंकज राहुल शर्मा और मेघराज मीणा जी। इसी बीच बड़ोदिया से जुड़ रहे हैं श्रोता साथी सतराम संजय सीताराम सत्यम जी। कल्याण मुंबई से जुड़ना चाह रहे हैं किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले जी। मोहन सुरेश जी संतोष बांसवाड़ा से जुड़ रहे हैं। आनंद से हैं धर्मराज वाधवानी जी, हरिशंकर जी, हेमराज मीणा जी, घनश्याम जी रायबरेली से जुड़ रहे हैं। इसी बीच हमारे और भी दोस्त श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं एड नाशिश शेख, नजर नाशिश शाजिद शाहिद जी। घाटोल से हंसराज विकास, वीरेश चौहान, मिथिलेश वीरेंद्र, देवेंद्र कटारा जी। बांसवाड़ा से राधेलाल संदीप चौहान, गणेशलाल रामेश्वरी जी। रायबरेली से श्रोता साथी अवधेश जी, सुंदरलाल, दीपक कुमार, अनूप चौहान, मेघराज मीणा जी। इसी बीच प्रतापपुर से श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं सुरेंद्र मीणा, प्राणी जी, सत्यम, शैलेंद्र, वीरेंद्र जी, इमरत सान जी, महेंद्र, मुकेश शर्मा, नरेश चौहान, राजकुमार, राजेश शर्मा, अरविंद, निकिता शर्मा जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।
1: बेटा, आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो जमाने को जीत पाए।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है कसूर फिल्म का कितनी बेचैन होके। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता है, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं दीपक कुमार अनूप चौहान, जो कि प्रतापपुर से जुड़ रहे हैं।

और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं प्रतापपुर से ही। सुरेंद्र मीणा, शैलेंद्र वीरेंद्र, इमरत जी, मेघराज मीणा जी, इसी बीच चिड़ियावासा से जुड़ रहे हैं निकिता शर्मा, अरविंद, राजेश शर्मा, राजकुमार जी, नरेश चौहान, मुकेश शर्मा जी, पन्नालाल जसवंत कुमार, हविशंकर गुप्ता जी, रविशंकर गुप्ता जी, बंटी प्रजापत। और भी श्रोता साथी सूरपुर से हैं सीताराम, राधेलाल, दिनेश चंद्र, विशाल, संतीश पांडे जी। रायबरेली से जुड़ना चाह रहे हैं शंकर दीपचंद्र जी, प्रकाश हरिशंकर जी, दयाराम प्रजापति जी, हरेश कुमार जी, हरिचरण कुमार और महेंद्र डामोर सीताराम जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं कितनी बेचैन होके। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा है और समय भी करीब आ रहा है साथियों कार्यक्रम से विदा लेने का, अगर दोस्तों अभी तक आपने अपने फरमाइश गीत हम तक नहीं पहुंचाए हैं तो ज़रूर पहुंचा दीजिए। हमें इंतज़ार है आपके फरमाइश गीतों का हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। तो दोस्तों फरमाइशों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बिहार कॉलोनी दिल्ली से। फिल्म का नाम है तेरे नाम। गीत के बोल हैं, क्यों किसी को वफा के बदले बेवफाई मिलती है। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल रचिता खुराना जी, अमरावती महाराष्ट्र से हैं सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, प्राय प्रसिद्धि हीरामन शेंडे, प्रतिभा गुणाने, महेश रोमटके जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि जी, नितिन जगमोहन, सुदृढ़तन, शिषपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी। अम्बाला हरियाणा से है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नमन कुर की रथ, सिमरन गुरशब्द सिंह राहुल, विजेंद्र कुमार जयजान। भद्रावती से जुड़ रहे हैं अब्दुल लोहेवाला, साइदा शेख, राहिल शेख, अब्दुल्ला शेख। मुंगी से जुड़ना चाह रहे हैं बाबा साहेब कंगणकर, सागरबाई कंगणकर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी कंगणकर, परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। कश्मीर से है फैजारा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश की गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, क्यों किसी को बेवफाई के बदले वफाई नहीं मिलती।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश की गीत की ओर। अगले फरमाइश का गीत मराठवाड़ा से आया है साथियों। फिल्म का नाम है जहर, गीत के बोल हैं वो लम्हे वो बातें। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान जी, तनवीर मसरत, सैयद निज़ामुद्दीन, राम भाऊ तांदले जी। जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशा, अजरा तबस्सुम जी। बनारस से अब्दुल मजीद अंसारी, नौरिन आफिया परवीन जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, आनंद राठौर, गिरजा राठौड़, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, वेदई जोशी। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफार डावर जी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवर, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी। ग्वालजन सनावत से मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद इकसाक, बब्बू टप्पू जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं वो लम्हे वो बातें। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हो जाएगा साथियों, क्योंकि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। उम्मीद करते हैं साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी फरमाइश के गीत रहे वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय, सुझाव और फरमाइश के गीत दोनों पहुँचा सकते हैं हमारे पते और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर।

हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, नई नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वाग रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है आदिवासी संस्कृति पहचान और युवा शक्ति को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, भारत अनेक संस्कृतियों भाषाओं और परंपराओं का देश है और इन्हीं विविधताओं में आदिवासी संस्कृति अपनी अलग पहचान रखती है।
0: जी हाँ।
1: ये संस्कृति केवल लोकगीतों नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा तक सीमित नहीं है कशिश, बल्कि ये प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक जीवन, मेहनत और आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण भी है।
0: बिल्कुल
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आदिवासी संस्कृति पहचान और युवा शक्ति को लेकर। जानेंगे कि किस तरह आज का युवा अपनी संस्कृति को बचाते हुए आधुनिक दौर में नई पहचान बना सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ आज भी हम करें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आदिवासी संस्कृति पहचान और युवा शक्ति को लेकर।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि गीत से पहले आपने जागृति जी बताया था कि हमारा देश भारत जो है वो अनेक संस्कृतियों और भाषाओं वाला देश है। यही श्रोता साथियों, अगर आपको बताएं कि आदिवासी संस्कृति किस प्रकार से हमारी धरोहर है, तो दोस्तों आदिवासी समाज जो है वो सदियों से ही प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीता आया है।
1: बिल्कुल,
0: उनके लोकगीत, उनके लोक नृत्य, त्योहार, रीति रिवाज, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान जागृति जी हमारी सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा है। श्रोता साथियों, हर त्योहार केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार और सामूहिक जीवन का संदेश भी देता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए हम देखते हैं कि इन परंपराओं को सहेज कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि पहचान केवल नाम से नहीं बनती, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और मूल्यों से बनती है।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, आज कई युवा आधुनिकता की दौड़ में अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आधुनिक बनना और अपनी पहचान को बनाए रखना दोनों साथ साथ चल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब युवा अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं कशिश, तो उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ता है, समाज में उनकी अलग पहचान बनती है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि किसी भी संस्कृति का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है। अगर युवा अपने बुजुर्गों से लोक कथाएं, लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, रीति रिवाज और जीवन मूल्यों को सीखेंगे, तो ये विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि युवा केवल दर्शक न बने, बल्कि अपनी संस्कृति के सक्रिय प्रतिनिधि भी जरूर बने।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। साथी श्रोता साथियों, आदिवासी समाज की कला और शिल्प विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि बांस, लकड़ी, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों से तैयार की गई वस्तुएं उनकी रचनात्मकता को दर्शाती है जागृति जी। इसी तरह औषधीय पौधों की जानकारी, पारंपरिक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का ज्ञान आज भी बेहद उपयोगी है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, यदि इन सभी कलाओं और ज्ञान को आधुनिक तकनीक से हम जोड़ दें, तो ये रोजगार के नए अवसर भी हमारे युवा साथियों के लिए पैदा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, जैसा कि हम आदिवासी संस्कृति को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने का सबसे मजबूत आधार है। लेकिन शिक्षा का अर्थ अपनी संस्कृति को भूल जाना नहीं है श्रोता साथियों। एक शिक्षित युवा वही है जो आधुनिक ज्ञान के साथ अपनी भाषा, अपनी परंपराओं और अपने सामाजिक मूल्यों को भी सम्मान दे।
0: बिल्कुल,
1: जब शिक्षा और संस्कृति साथ में चलते हैं, तब समाज का संतुलित विकास संभव हो पाता है।
0: जी हाँ साथियों, हम देखते हैं कि आदिवासी संस्कृति हमें सिखाती है कि जंगल, जल और जमीन जो है वो केवल संसाधन नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। आज पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है जागृति जी। ऐसे समय में आदिवासी समाज की जीवन शैली हम सभी के लिए एक प्रेरणा है।
1: बिल्कुल,
0: युवा यदि ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को अपना दायित्व समझने लगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि आज हस्तशिल्प, वन उत्पाद और जैविक खेती, सांस्कृतिक पर्यटन, लोक कला के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर भी उपलब्ध है। कशिश, अगर युवा साथी अपने पारंपरिक कौशल को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और डिजिटल माध्यमों से जोड़े, तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही डिजिटल युग में भी संस्कृति का प्रचार किया जा सकता है युवा साथियों। जैसे कि आज मोबाइल और इंटरनेट केवल मनोरंजन के साधन नहीं रह गए हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में जो हमारे युवा साथी हैं, वो सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी लोक कला, लोकगीत, संस्कृति और परंपराओं को देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इससे जागृति जी संस्कृति का संरक्षण भी होगा और हमारी संस्कृति को नई पहचान भी मिलेगी।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आदिवासी संस्कृति के महत्व को लेकर, तो ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी आदिवासी संस्कृति, पहचान और युवा शक्ति को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जान पा रहे थे कि आदिवासी संस्कृति किस तरह से हमारी धरोहर है, हमें अपनी पहचान पर गर्व किस तरह से करना है, साथ ही युवा संस्कृति के सच्चे संरक्षक कैसे बन सकते हैं, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान को नई पहचान किस तरह से मिल सकती है, शिक्षा और संस्कृति का संतुलन क्या है, आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए अवसर को लेकर भी हमने बात की थी।
1: जी हाँ।
0: यही हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कशिश कि डिजिटल युग में संस्कृति का प्रचार भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हम देखते हैं कि आज का युवा केवल अपने भविष्य की चिंता नहीं करता, बल्कि समाज के विकास में भी भागीदारी निभाता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण हो, पर्यावरण संरक्षण हो या सामाजिक जागरूकता। श्रोता साथियों, इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बताया जाता है कि जब युवा आगे बढ़ते हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है।
0: जी हाँ कशिश, हमारे श्रोताओं साथियों को हम ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सांस्कृतिक पहचान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। श्रोता साथियों, अपनी संस्कृति से जुड़ा व्यक्ति कभी भी अपनी पहचान को नहीं खोता है।
1: जी हाँ।
0: जो युवा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है कशिश, वे आत्मविश्वास के साथ हर चुनौतियों का सामना भी करते हैं और समाज के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। इसीलिए आधुनिकता को अपनाना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी परंपरा को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि श्रोता साथियों, आदिवासी संस्कृति केवल किसी एक समाज की धरोहर नहीं है, बल्कि पूरे भारत की अमूल्य विरासत है। इसकी पहचान हमारे लोक जीवन, प्रकृति प्रेम, सामूहिकता, मानवीय मूल्यों में बसती है। दोस्तों, आज के युवाओं के पास जागृति जी ये सुनहरा अवसर है कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए शिक्षा, तकनीक और नवाचार के माध्यम से अपने समाज को एक नई दिशा दें।
0: बिल्कुल कशिश।
1: साथियों, याद रखिए कि जो युवा अपनी संस्कृति को समझता है वही अपने भविष्य को मजबूत बनाता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में हम सभी को मिलकर अपनी भाषा, अपनी परंपराएं, लोक कलाएं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और गर्व के साथ अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। साथियों,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारी शक्ति है और यही एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक भारत की नींव है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि आदिवासी संस्कृति केवल किसी एक समुदाय की पहचान नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य और जीवंत अध्याय है। जैसा कि हमने पहले भी हमारे श्रोता साथियों को बताया था, प्रकृति के प्रति सम्मान, सामूहिक जीवन, श्रम का महत्व, लोक कला, लोकगीत, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण, ये सारे जीवन मूल्य आज भी आदिवासी समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोताओं, आधुनिक विकास की दौड़ में ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी संस्कृति, भाषा, परंपराओं और ज्ञान को केवल संरक्षित ही ना करें, बल्कि उनसे सीखने का भी प्रयास करें।
1: बिल्कुल।
0: वास्तविक प्रगति तो कशिश वही है जिसमें विकास और विरासत दोनों साथ चले। जब आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान के समान अवसर मिलेंगे तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहेगी, तभी समावेशी और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आदिवासी संस्कृति का सम्मान करेंगे, उसकी विविधता को अपनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों तक इस अनमोल धरोहर को गर्व के साथ पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जिस राष्ट्र की जड़ें अपनी संस्कृति में मजबूत होती है कशिश, उसका भविष्य भी उतना ही उज्जवल, समृद्ध और सशक्त होता है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि श्रोता साथियों, किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्कृति, उसकी पहचान और उसके युवा होते हैं। आदिवासी संस्कृति हमें प्रकृति से प्रेम, सामूहिक जीवन, सादगी और मानवीय मूल्यों का अनमोल संदेश देती है। जागृति जी, ये केवल अतीत की विरासत नहीं है बल्कि भविष्य की प्रेरणा है। आज आवश्यकता बस इस बात की है दोस्तों कि युवा अपनी भाषा, लोक कला, सांस्कृतिक मूल्यों को गर्व के साथ अपनाए और आधुनिक शिक्षा, तकनीक और नए अवसरों का लाभ भी उठाते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जिस युवा को अपनी पहचान का ज्ञान होता है जागृति जी, वही आत्मविश्वास के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान देता है।
0: जी हाँ कशिश, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को हम बस यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम सभी इस अनमोल विरासत का सम्मान करें, इससे प्रेरणा लें और ऐसा भारत बनाएं जहाँ हर संस्कृति का सम्मान हो, जहाँ हर संस्कृति को समान सम्मान और हर समुदाय को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
1: बिल्कुल।
0: जब अपनी जड़ों का सम्मान होता है श्रोताओं, तभी राष्ट्र का भविष्य मजबूत होता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर हम सुनवाएं।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारे आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है आदिवासी बच्चों की पारंपरिक सीख और प्रकृति से जुड़ाव को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि बच्चे किसी भी समाज का भविष्य होते हैं। वे जो देखते हैं वही सीखते हैं और जो सीखते हैं वही आगे समाज को लौटाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आदिवासी समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ बच्चों की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि जंगल, पहाड़, नदी, खेत, पशु पक्षी

0: पक्षी और पूरा प्राकृतिक वातावरण ही उनका विद्यालय बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: वे प्रकृति के बीच रहते हुए जीवन के ऐसे अनमोल पाठ सीखते हैं जो उन्हें जिम्मेदार, संवेदनशील और आत्मनिर्भर बनाते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं आदिवासी बच्चों के पारंपरिक सीख और प्रकृति से जुड़ाव को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि प्रकृति ही हमारे बच्चों की पहली पाठशाला है, तो साथियों आदिवासी बच्चों का बचपन प्रकृति की गोद में ही बीतता है।
1: जी जी,
0: जैसे कि सुबह के पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की छाया, खेतों की हरियाली और बहती नदियाँ, ये सभी चीजें उनके जीवन का हिस्सा होती हैं। अंजलि जी, वे छोटी उम्र से ही समझ जाते हैं कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि उनके जीवन का आधार है।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें ये सिखाया जाता है साथियों कि पेड़ काटने से पहले नया पौधा लगाना चाहिए, जंगल से उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो, पानी की एक एक बूंद की कीमत समझनी चाहिए, और यही शिक्षा उन्हें पर्यावरण संरक्षण का सच्चा संदेश देती है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल यही बात आती है कशिश, बुजुर्गों से मिलने वाली जीवन की सीख की। तो श्रोता साथियों, आदिवासी समाज में दादा दादी, नाना नानी और गांव के बुजुर्ग बच्चों के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे कहानियों, लोकगीतों, कहावतों और अनुभवों के माध्यम से बच्चों को जीवन के मूल्य सिखाते हैं।
0: जी हाँ,
1: वे बताते हैं कि मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता।
0: बिल्कुल,
1: ईमानदारी, सादगी, सहयोग और सामूहिक जीवन की भावना ही समाज को मजबूत बनाती है। बच्चे इन सीखों को केवल सुनते ही नहीं है बल्कि अपने दैनिक जीवन में अपनाते भी है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें श्रोता साथियों जंगल से जुड़ी पारंपरिक जानकारियों की, तो देखते हैं कि आदिवासी बच्चे बचपन से ही जंगल के पेड़ पौधों, औषधीय जड़ी बूटियों, मौसम के संकेतों और पशु पक्षियों की पहचान करना सीखते हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, उन्हें ये पता होता है कि कौन सा फल खाने योग्य है और कौन सी जड़ी बूटी छोटी मोटी बीमारी में काम आती है, और किस मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी पुस्तक के सुरक्षित रखा जाता है। हम देख सकते हैं कि आदिवासी संस्कृति में मैं से पहले हम आता है, बच्चे छोटी उम्र से ही मिलजुल कर काम करना सीखते हैं। खेतों में परिवार की मदद करना, त्योहारों में भाग लेना, गांव की सफाई करना और जरूरतमंदों की सहायता करना उनके संस्कारों का ही हिस्सा होता है। इससे उनमें सहयोग, जिम्मेदारी और सामाजिक एकता की भावना भी विकसित होती है। अंजलि जी
1: बिल्कुल यही अब बात आती है कशिश, त्योहार और संस्कृति से जुड़ाव की। श्रोता साथियों, आदिवासी समाज के त्योहार केवल उत्सव नहीं होते बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर भी होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: फसल कटाई, वर्षा का आगमन, नए अन्न और जंगल से जुड़े अनेक पर्व बच्चों को ये सिखाते हैं कशिश कि प्रकृति का सम्मान करना हमारा सभी का कर्तव्य है। इन अवसरों पर बच्चे लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्र सीखते हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत होती है। इसी के साथ श्रोता साथियों, आदिवासी बच्चे कम उम्र से ही अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करना सीखते हैं। वे पशुओं की देखभाल करते हैं, खेतों में सहयोग करते हैं, लकड़ी और पानी लाना, बीज बोना और पौधों की रक्षा करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और मेहनत करने की आदत विकसित होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, आदिवासी संस्कृति और प्रकृति को लेकर और हमारे बच्चों का जुड़ाव इससे हम कैसे कर सकते हैं इस विषय पर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि आदिवासी बच्चों की पारंपरिक सीख और प्रकृति से जुड़ाव किस तरीके से है। श्रोता साथियों, जब बच्चे पेड़ों के साथ खेलते हैं, पक्षियों की आवाज पहचानते हैं और नदियों के किनारे समय बिताते हैं, तब उनके मन में प्रकृति के प्रति अपनापन पैदा होता है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, वे समझ पाते हैं कि यदि जंगल सुरक्षित रहेगा तो पानी बचेगा, पानी रहेगा तो खेती होगी और खेती होगी तो जीवन खुशहाल रहेगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। यही अगर बात करें चुनौतियों की, तो हम देखते हैं कि आज बदलती जीवन शैली, मोबाइल फोन, इंटरनेट और आधुनिकता के कारण बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: कई श्रोता साथियों पारंपरिक खेल जो है, लोकगीत, कहानियां और जंगल से जुड़ी जो जानकारियां हैं, वो भी धीरे धीरे भुलाई जा रही हैं। यदि समय रहते अंजलि जी इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया गया, तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर कमजोर पड़ सकती है।
0: जी जी,
1: ऐसे में हमें श्रोता साथियों कुछ प्रयास करने चाहिए, जैसे कि बच्चों को समय समय पर जंगल, खेत और प्राकृतिक स्थानों की सैर कराई जानी चाहिए।
0: जी हाँ,
1: दादा दादी और बुजुर्गों की कहानियां सुनने की जो परंपरा है, उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी के साथ विद्यालयों में भी सांस्कृतिक और स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को भी स्थान दिया जाना चाहिए। बच्चों को पौधारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता जैसे कार्यों से जोड़ा जाए तो भी ये बेहतर होगा अंजलि जी, और हमारा एक अच्छा प्रयास भी हो सकता है। साथ ही सामुदायिक कार्यक्रमों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगी कि जब कोई बच्चा एक पौधा लगाता है, किसी घायल पक्षी की मदद करता है, पानी बचाता है या अपने बुजुर्ग से मिली सीख को जीवन में अपनाता है, तब कशिश वह केवल एक अच्छा बच्चा नहीं बनता बल्कि प्रकृति का सच्चा मित्र बनता है।
1: बिल्कुल,
0: यही छोटे छोटे संस्कार आगे चलकर एक जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील समाज का निर्माण करते हैं। आदिवासी बच्चों की पारंपरिक सीख केवल श्रोता साथियों अतीत की विरासत नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: बिल्कुल,
0: प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की कला, सामूहिक जीवन का महत्व, मेहनत का सम्मान, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संस्कृति से जुड़ाव, ये सभी ऐसे मूल्य हैं जिनकी आज पूरे समाज को आवश्यकता है।
1: जी हाँ,
0: आधुनिक शिक्षा और तकनीक का स्वागत करते हुए भी हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जब बच्चे अपनी परंपराओं को समझेंगे कशिश, प्रकृति का सम्मान करेंगे और बुजुर्गों के अनुभवों से सीखेंगे, तभी वे एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान देंगे जहां विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल,
0: हम सब मिलकर यह संकल्प भी ले सकते हैं कि आदिवासी समाज की इस अनमोल धरोहर को हम सहेजेंगे, बच्चों तक पहुंचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। यही हमारी संस्कृति का सम्मान, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और एक समृद्ध भविष्य की सच्ची नींव होगी।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे कि साथियों, किसी भी समाज की असली पहचान उसकी इमारतों या तकनीक से नहीं होती बल्कि उसके संस्कारों और जीवन मूल्यों से होती है।
0: बिल्कुल,
1: आदिवासी समाज ने सदियों से अपने बच्चों को यह सिखाया है दोस्तों कि धरती केवल रहने की जगह नहीं बल्कि जीवन देने वाली माँ भी है।
0: बिल्कुल,
1: पेड़ पौधों, जल, जंगल और जीव जंतुओं के साथ संतुलित जीवन जीने की यह सोच आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकती है। ऐसे समय में साथियों, जब पर्यावरण संकट और सामाजिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब आदिवासी परंपराओं में छिपी सीख हमें टिकाऊ और संवेदनशील जीवन का रास्ता दिखाती है।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इन परंपराओं को केवल इतिहास का हिस्सा न माने बल्कि उन्हें वर्तमान और भविष्य की शिक्षा का भी हिस्सा बनाए। बच्चों को उनकी जड़ों, लोक संस्कृति, प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान से जोड़ना केवल उनकी पहचान को मजबूत करना नहीं होता कशिश, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और प्रकृति प्रेमी नागरिक बनाना भी है। यदि हम आज इस अमूल्य विरासत को सहेजने का प्रयास करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी अपनी संस्कृति पर गर्व करेगी और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर एक बेहतर, सुरक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण करेगी।
1: जी हाँ,
0: यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे अमूल्य विरासत है। श्रोता साथियों, जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होते बल्कि जीवन का सबसे बड़ा विद्यालय है। यहाँ हर पत्ता एक सीख देता है, हर नदी धीरे का संदेश सुनाती है, हर पेड़ हमें निस्वार्थ भाव से देना सिखाता है। आदिवासी बच्चों का बचपन इसी प्रकृति के गोद में खिलता है, जहाँ किताबों के साथ साथ कशिश, अनुभव भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आदिवासी बच्चों की पारंपरिक सीख और प्रकृति से जो जुड़ाव है उसके महत्व को हम सभी को समझना होगा।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी रही और हमने जाना कि किस प्रकार से जो आदिवासी संस्कृति की स्थानीय परंपरा है और जो बच्चों को बचपन से ही सीख दी जाती है वो हमारे बच्चों को हम कैसे दे सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ऐसी ढेर सारी बातें रही। अब जैसा कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।
2: चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकना का हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकला का बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
0: तो दोस्तों, हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करूं, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हमरी रहो आपनु सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 एफएम माते ने आप सबनु घणीमान स्वागत करा हूं अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जेम की भाईन बहनों अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी जहां कार्यक्रम खेतीबाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो किसान भाई बहनों आज अमारी कार्यक्रम में आपते की बातचीत नु विषय है कि आपणे जलवायु अनुकूल खेती हरते करी शकां। जेम की आपणे देखी रहा कि घणा कानो आ परिवर्तन जलवायु माते थई रह्यो है ते एने कारण आपणी खेती प्रभावित थई रही है। ते एवं में आपणे ने जलवायु अनुकूल खेती हरते करवी है ई हंगरी वाते आज आपणे कार्यक्रम में करवा वारा हां। तो भाईन बोनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तकी घणा कानी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपणी वाते। तो किसान भाई बोनो आप हमर दरेजू आपणो रेडियो आपणी वाते वाग रेडियो 90.8 एफएम माते।

0: किसान भाइयों बहनों, गीत तो आयशो पुरु नड़ गीत बात एक वगत फेरी आप सबनों घने मान स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाइयों बहनों, गीत के पहले आपने विषय उतार दे दू की आज आपने बातचीत करवा वाला हूँ कि आपने जलवायु अनुकूल खेती हरते करी सका। भाइयों बहनों, अना विषय माते बातचीत करवा बल्ले आज आपने कार्यक्रम तक जुड़े रहे कल्याण काका, तो सप्ते की पहले आपने हमरी लड़नी बात है मोरे कर आपकी बात है। राम राम कल्याण काका।
1: राम राम अंजलि भाई जी। राम राम
0: कल्याण काका, आपनु घणेमान स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के कल्याण काका, आपने टेम टेम माते आपने कार्यक्रम तकी जुड़ा हो ने घणी असल बातें आपने किसान भाई बहनों तकी कर रहा हूँ, तो कल्याण काका सारे मेरी आपने आ बात सांभरवा में आवी रही है कि आपने जे वक्त भी खेती करी रहा तो मौसम नु जो परिवर्तन है ये आकू दाड़ी थातु सेरू है। जिम की अवड़े आपने देखी रहो कि गर्मी नु मौसम साली रू है तो भी आपने देखा हो कि घणी वक्त साटा पड़ी जाए है ने साटा पड़वाना जई वगत टेम रहत एनी वगत घणा कनु ताप पड़े ने गर्मी लागे ने सर्दी में भी बरसात थाय है। आजे मौसम नु बदलाव थई रू है ते एने कारण आपणे जे किसान भाई बहन है ई घणा कना परेशान थई से, तो एवं में आजे आपणे कार्यक्रम में इस वाते करंगा के आजे जलवायु परिवर्तन थई रू है ते इन में आपणे ने खेती हरते करवी है।
1: लाख रूपये नी बात करी भाई जी आपे ना, आज नो विषय जे आपे चुन्यू है ई बहुत जरूरी विषय हतो।
0: हवे
1: वास्तव में आपने बहुत चिंतन करवा बाद विषय तकलीफ होती है कि आपड़ा जो राजस्थान है मध्य प्रदेश ने गुजरात एना सीमावर्ती क्षेत्र में जो आपड़ा जनजाति भाई रही जाए आदिवासी भाई रही जाए ये देखी रहे कि दाड़े दाड़े आपने सब मौसम बदलाई जाए। आज देखा तो हियारा में तो पानी पड़ी रू है, उनारा में गर्मी थी पड़ी रही ने बरसात में पानी कम पड़ी रू
0: है।
1: मतलब एम कही सक पाछले दाड़े देखियो ना आपे के ओला पड़ा बांसवाड़ा में, तो आना थी कि धीरे धीरे धीरे धीरे आज मौसम में जो बदलाव थी रो है ये भाई जी हमारे किसान भाई बल्ले बड़ी खतरनाक चुनौती थी गई
0: है।
1: केम के आज मौसम नो स्वरूप है एक बहुत मोटी समस्या बनी गई आपने बल्ले। मैं आना रहा हूँ कि कोई भी कृषि वैज्ञानिक या मोटा मोटा जितना भी संस्थान है ये सटीक भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता, भविष्यवाणियां भी हमें धीरे धीरे बदलाई रही कमजोर पड़ी रही या गलत साबित थी रही। तो आना में भाई जी आज जलवायु में आज परिवर्तन थई रह्यो जेवी आपे वात करी, आज आबोहवा बदलाई रही है ये आपड़ा वागड़ ने खेती बल्ले कोई ताजी बात नहीं है। तो भाई जी ताजी बात नहीं है, ये बात तो खरी है, कृषि प्रधान देश है, वागड़ ना भाई की खेती किसानी करे है तो ताजी इनती पड़ी ताजी बात में ताजी बात है तो खुद ही लाभिस पड़ेगा अपने
0: कल्याण
1: क्या बदलती थी जो परिस्थितियां थी गई है एना मौसम में धीरे धीरे करव ही पड़ेगा भाई जी की आज जलवायु जेम अपने मिली रही है एने अनुसार अपने हेरती खेती कर सकूंगा आपने जानू पड़ेगा। आज मारो विचार यो थी रो के आज भाई बोनो थी कि आप इस बात करें आप जो वागड़ रेडी नो कार्यक्रम है ना आना कार्यक्रम में आ विषय एवं है कि भाई लोग महसूस कर रहे आप देखी रहा कि पाछला बे पांच वर्ष आप देखा कि जारी भी गहू या तो उबा हो या कपाई ने खरम आवे ने मावटो था पानी परेस पड़े बस आ सब थी मोटी तकलीफ थी गई। तो सबू पहले तो आपने ई पत्तू करव पड़ेगा के आपने ये जानवू है क्या जलवायु परिवर्तन हूँ कहवाय दबड़े में बात करी आपने कि आप मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात ने तन्ने राज्य ने जो सीमा माते आपने आज वागड़ क्षेत्र है निवास करी आपने जनजाति भाई जे वसी रहे हैं इन आना क्षेत्र में हूँ था कि मौसम में लगातार बदलाव थी जो हमारा हूँ था कि चौमासा ना दाड़ा में पानी ना दाड़ा घटी जाए पहले आपने विचार करता था ना कि चार महीना तो टाड़ पड़े चार महीना गर्मी था ने चार महीना पानी पड़े
0: होवे कल्याण काका
1: पण हवे धीरे धीरे धीरे धीरे बरसात ना दाड़ा ही कम थाई जाए पहले हूँ था कि एक बे तन दाड़ा में एटलू पानी पड़ी जा के नदी नाला में बाढ़ आवी जा हूँ था कि पूरु पानी वही ने सलू जा एने बाद हूँ था कि दस पंद्रह दाड़ा बाद फिर पानी आवे या एटले के कभी घाला घाणा वधे तो पंद्रह थी वधारे दाड़ा एवा थई जाए केणा पानी नहीं पड़े तो पछी जे फसले करी हैं ये हुकी थई जाए
0: होवे
1: ने वर्षा ने आधारित आपणे जे फसले करे खरीफ नी फसले ये हुकाई जाए
0: होवे
1: ने भाई जी बीजी आड़ी आपणे सर्दी नी बात करो तो हियारा में होता के मावट थई जा
0: होवे
1: आपणे इस बात करी ने के बिन मौसम बरसात वाली बात करो
0: होवे
1: ने ना में होता के प्रभात प्रभात में टाड़ वधारे पड़े हां जवार
0: होवे
1: ने बपोर में जो तो एटली कड़ाका नी तेज

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है, हम कौन सी बुराइयों को हमें छोड़ना चाहिए। श्रोता साथियों, जैसे कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत छोड़ो आंदोलन केवल अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का आंदोलन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, एकता और राष्ट्र निर्माण की चेतना का भी आंदोलन था। आज हम देखते हैं कि भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन सच्चे अर्थों में विकसित और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें उन बुराइयों को छोड़ना होगा जो राष्ट्र की प्रगति में बाधा बन रहे हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी कि आज हमें कौन सी बुराइयों को छोड़ना होगा। बातें निरंतर बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को क्यों न एक प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ।
0: और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि हम कौन कौन सी बुराइयों को छोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसा कि अंजलि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो भारत छोड़ो आंदोलन ने हमें विदेशी शासन से मुक्ति दिलाई, लेकिन आज का भारत हमसे एक नए आंदोलन की अपेक्षा करता है।
1: बिल्कुल।
0: बुराइयां छोड़ो आंदोलन। यदि हर नागरिक भ्रष्टाचार, नशा, भेदभाव, आलस्य, स्वार्थ, पर्यावरण की अनदेखी और नकारात्मक सोच जैसी बुराइयों का त्याग कर दे तो भारत केवल आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विश्व का अग्रणी राष्ट्र बन सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, 9 अगस्त 1942 को भारत ने अंग्रेजों से कहा था कि भारत छोड़ो। आज स्वतंत्र भारत हमसे कह रहा है कि बुराइयां छोड़ो। उस समय विदेशी शासन सबसे बड़ी बेड़ी था। आज भ्रष्टाचार, आलस्य, नशा, जातिवाद, प्रदूषण और सामाजिक विभाजन जैसी बुराइयां हमारे विकास की राह में बाधा बन रही है। यदि उस समय का नारा करो या मरो था तो आज का संकल्प होना चाहिए बुराइयां छोड़ो, भारत छोड़ो।
0: बिल्कुल।
1: महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला श्रोता साथियों भारत छोड़ो आंदोलन केवल अंग्रेजों के देश से बाहर निकालने का आंदोलन नहीं था बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, एकता और राष्ट्र निर्माण की चेतना का भी आंदोलन था।
0: जी हाँ।
1: आज भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन जागृति जी, सच्चे अर्थों में विकसित और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें उन बुराइयों को छोड़ना होगा जो राष्ट्र की प्रगति में बाधा बन रही है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि गांधी जी चाहते थे कि भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र बने। उन्होंने सत्य, अहिंसा और आत्मबल के माध्यम से संघर्ष का मार्ग दिखाया। आज अगर हम इस आंदोलन की भावनाओं को समझें तो पाएंगे कि असली स्वतंत्रता तब मिलेगी जब हमारा समाज हर प्रकार की बुराइयों से मुक्त होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, इतिहास केवल पढ़ने की चीज नहीं है बल्कि भविष्य बनाने की प्रेरणा भी है। भारत छोड़ो आंदोलन हमें बताता है कि जब पूरा देश एक लक्ष्य के रूप में एकजुट हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन केवल स्वतंत्रता का इतिहास नहीं बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा है। यदि आज की पीढ़ी उस आंदोलन की एकता, अनुशासन, त्याग और राष्ट्र प्रेम को अपने जीवन में उतार ले तो भारत का भविष्य और अधिक उज्जवल, समृद्ध और शक्तिशाली बन सकता है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। रिश्वत, बेईमानी, धोखाधड़ी और नियमों की अनदेखी विकास की गति को धीमा करती। अगर प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर ईमानदारी का पालन करे तो देश के बहुत सारी समस्या है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। हम देखते हैं श्रोताओं की भ्रष्टाचार केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं, ये तब भी होता है जब कोई व्यक्ति नियम तोड़कर अपना लाभ चाहता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य और पारदर्शिता को स्थान देना होगा। आज हम देख रहे हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, जातियां हैं और संस्कृतियां हैं। अगर विविधता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जब यही विविधता भेदभाव का कारण बन जाती है तब समाज कमजोर पड़ जाता है। जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटना राष्ट्रहित के विरुद्ध है। हमें संविधान की भावनाओं को अपनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान देने होंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सन 1942 में भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था। भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे, उनके अधिकार छीने जा रहे थे और देश का विकास रुक गया था। इसी समय 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देशवासियों को एक ही संदेश दिया, करो या मरो, यानी कि या तो भारत को आजाद कराओ या फिर इस संघर्ष में अपना सर्वस्व नौछावर कर दो। 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी सहित कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरे देश में लोगों ने आंदोलन जारी रखा। किसानों, मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थी और युवाओं ने मिलकर स्वतंत्रता की मशाल जलाए रखी। यही आंदोलन आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता का मजबूत आधार बना।
0: बिल्कुल।
1: आज भारत स्वतंत्र है, फिर भी नया भारत छोड़ो आंदोलन क्यों? यानी कि आज हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन नहीं है जागृति सी, लेकिन कई ऐसी बुराइयां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। यदि हम इन बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ जो है वो अधूरा रह जाएगा। आज का नारा होना चाहिए बुराई छोड़ो, भारत छोड़ो।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कौन सी बुराइयों को हमें छोड़ना चाहिए, तो ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना कि आज भारत स्वतंत्र है, फिर भी नया भारत छोड़ो आंदोलन क्यों, यानी कि बुराई छोड़ो भारत जोड़ो जो ये नारा है वो हमें बताता है कि भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेना या देना नहीं है, बल्कि झूठे दस्तावेज बनाना, नियमों का उल्लंघन करना, सरकारी संपत्ति का नुकसान करवाना, अपने काम में लापरवाही करना है, ये सभी भ्रष्टाचार के रूप होते हैं। यदि हर नागरिक ईमानदारी अपनाए तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: भारत में अनेक धर्म, भाषा और संस्कृति निवास करती है, लेकिन जब हम जाति, धर्म या भाषा के आधार पर जागृति जी लोगों में भेदभाव करते हैं तब देश कमजोर होता है। स्वतंत्र भारत का सपना तभी पूरा होगा श्रोता साथियों, जब हर नागरिक एक दूसरे का सम्मान करेगा।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज के श्रोता अगर नशे की गिरफ्त में आ जाए तो उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। हम देखते हैं अंजलि कि शराब, तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीली पदार्थ न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि परिवार और समाज को भी तोड़ते हैं। भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है श्रोताओं तो हमें नशा मुक्त रहना होगा। खेल, योग, व्यायाम और सकारात्मक सोच ही सच्ची शक्ति का आधार है। कोई भी राष्ट्र केवल संसाधनों से महान नहीं बनता है बल्कि मेहनती नागरिकों से महान बनता है। हम देखते हैं अंजलि कि आलस्य व्यक्ति की प्रतिभा को नष्ट कर देता है। समय का सदुपयोग, अनुशासन और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है।
0: बिल्कुल,
1: युवा अगर मेहनत को अपना धर्म बना ले तो भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, महात्मा गांधी स्वयं श्रम करने में विश्वास रखते थे। आज भी सफलता उन्हीं को मिलती है श्रोता साथियों जो मेहनत करते हैं। समय पर काम करना, अनुशासन रखना, जिम्मेदारी निभाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसी के साथ स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यदि हम सड़क पर कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करते हैं या सार्वजनिक स्थानों को गंदा रखते हैं तो हम अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत है।
1: बिल्कुल,
0: पेड़ काटना, पानी बर्बाद करना और प्रदूषण फैलाना आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी खिलवाड़ है। हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वर्षा जल संरक्षण करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और प्रकृति का सम्मान करें।
1: बिल्कुल अंजलि, आज समाज की बहुत सारी समस्याओं का कारण केवल स्वार्थ है। जब व्यक्ति केवल अपने लाभ की सोचता है तब समाज और राष्ट्र का नुकसान होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों ने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है।
0: बिल्कुल,
1: हमें भी अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज और देश के हित को प्राथमिकता देनी होगी। सेवा, सहयोग और समर्पण ही सच्चे नागरिक की पहचान है।
0: जी जी।
1: और श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी आधी आबादी को समान अवसर न मिले। बेटी और बेटे में भेदभाव, बाल विवाह, दहेज और महिलाओं के प्रति हिंसा, ये सारी कुरीतियां अंजलि समाज को कमजोर कर रही है। महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और समान अवसर देना केवल उनका अधिकार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता भी है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, भारत की सबसे बड़ी ताकत उनके युवा होते हैं। यदि युवा जो है वो नशे से दूर रहें, नई तकनीक सीखें, रोजगार के अवसर पैदा करें, देशी उत्पादों को बढ़ावा दें, संविधान और कानून का सम्मान करे तो भारत विश्व में नई पहचान बना सकता है।
1: बिल्कुल,
0: हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि न तो हम रिश्वत देंगे और न लेंगे, न तो हम जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे और हम नशे से दूर रहेंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे और अपने गांव और देश की प्रगति में योगदान देंगे।
1: बिल्कुल,
0: एक प्रसंग श्रोता साथियों को सुनाना चाहेंगे कि एक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि यदि आज गांधी जी हमारे गांव आए तो वे सबसे पहले किससे कहेंगे भारत छोड़ो, तो एक बच्चे ने उत्तर दिया कि वे किसी इंसान से नहीं बल्कि हमारे अंदर की बुराई से कहेंगे भारत छोड़ो। पूरा विद्यालय तालियों से गूंज उठा। यही उत्तर आज पूरे भारत का उत्तर होना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, हम अक्सर समस्याओं की शिकायत करते हैं लेकिन समाधान का हिस्सा बनने से बचते हैं। अगर हर नागरिक अपने आसपास की छोटी छोटी समस्याओं को हल करने का प्रयास करे तो बड़ा परिवर्तन संभव है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, स्वच्छता, शिक्षा, जल संरक्षण और सामाजिक सहयोग, ये सारे क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका निभा सकता है। आज हम देखते हैं अंजलि कि महात्मा गांधी जी ने जिस स्वराज की कल्पना की थी वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी।
0: बिल्कुल,
1: उनका स्वराज ऐसा समाज था जहां सत्य, अहिंसा, समानता, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और नैतिकता का शासन हो। आज अगर हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे तभी सच्चे अर्थों में भारत छोड़ो आंदोलन की भावनाओं को जीवित रख पाएंगे।
0: जी हाँ जागृति जी, भारत छोड़ो आंदोलन केवल इतिहास की एक घटना नहीं बल्कि जागरूकता, साहस और परिवर्तन का प्रतीक है। 1942 में हमारे पूर्वजों ने विदेशी शासन को चुनौती दी थी। आज हमें अपनी बुरी आदतों, सामाजिक कुरीतियों और नकारात्मक सोच को चुनौती देनी होगी। यदि हर नागरिक अपने जीवन से केवल एक बुराई भी छोड़ दे, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, नशा हो, भेदभाव हो, गंदगी हो या आलस्य हो, तो पूरे देश में सकारात्मक परिवर्तन की एक नई लहर उठ सकती है।
1: बिल्कुल,
0: राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों से नहीं बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिक से होता है। इसलिए इस भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर हम एक नया संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने देश से नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों से कहेंगे भारत छोड़ो।
1: बिल्कुल,
0: यही स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही विकसित, स्वच्छ और समरस, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की दिशा में हमारा सबसे बड़ा कदम होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर की निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है।
4: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तकीस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
5: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, हर सेवा दान से नहीं होती, कुछ सेवाएं इंसानियत से होती हैं। हर मदद के लिए जेब का भरा होना जरूरी नहीं है, कई बार दिल का भरा होना भी काफी होता है। क्योंकि दोस्तों, एक सच्ची मुस्कान किसी का दर्द तो पूरी तरह नहीं मिटा सकती, लेकिन यह भरोसा जरूर दिला सकती है कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉग रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हो गई हूँ साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में जहाँ हम जीवन के ऐसे विषयों पर बातचीत करते हैं जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे परिवार और पूरे समाज को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। आज का विषय सुनने में बहुत सरल है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझ लिया जाए तो यह हमारे व्यवहार, हमारे समाज दोनों को बदल सकता है। आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है कि क्या मुस्कान बांटना भी एक सामाजिक सेवा है। बातें कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात कर रहे हैं कि क्या मुस्कान बांटना भी एक सामाजिक सेवा है। जी हाँ दोस्तों, जब भी सामाजिक सेवा की बात आती है तो हमारे मन में कुछ तस्वीरें उभरती हैं, जैसे कि किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करना, रक्तदान कर देना, पौधे लगाना, शिक्षा देना, बीमार व्यक्तियों की मदद करना या किसी जरूरतमंद की आर्थिक सहायता करना। दोस्तों, ये सभी कार्य निश्चित रूप से महान हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी उदास व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना भी समाज की सेवा हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, कभी आपने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी निराश इंसान का हौसला बढ़ाना, किसी बुजुर्ग से कुछ देर बैठकर बातें करना, किसी बच्चे की कोशिश की सराहना करना या किसी अजनबी का सम्मान पूर्वक अभिवादन करना भी सेवा का ही एक रूप है। आज हम इस विषय पर विचार और मंथन करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कि मुस्कान केवल चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि मन की भाषा भी है। जी हाँ दोस्तों, मुस्कान वह भाषा है जिसे पढ़ने के लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिना शब्दों की भी अपनापन व्यक्त कर देती है। एक सच्ची मुस्कान कहती है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, तुम अकेले नहीं हो। आज जब लोग पहले से अधिक व्यस्त हैं, तनाव में हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तब एक सच्ची मुस्कान कई बार दवा से पहले असर कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसका प्रभाव अनमोल होता है। जो मुस्कान बांटता है वो केवल चेहरा नहीं वातावरण भी बदल देता है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग मुस्कुराना ही भूल गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, आज का जीवन जो है वो तेज गति से बढ़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक काम, जिम्मेदारियां, सिंचाई, मोबाइल, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की चिंता, इन सब के बीच मुस्कुराना जैसे एक आदत नहीं बल्कि एक दुर्बल घटना बन गया है। हम कई बार अपने ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से मुस्कुराकर बात नहीं करते। क्या दोस्तों ये केवल व्यस्तता है या हम फिर धीरे धीरे भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं? ये हमारे लिए सोचने की बात है। यही जरा सोचिएगा दोस्तों कि यदि सुबह घर में हर व्यक्ति एक दूसरे का मुस्कुराकर अभिवादन करे, यदि माता पिता बच्चों की छोटी सी सफलता पर मुस्कुरा दे, यदि बच्चे अपने दादा दादी के साथ बैठकर हंसे, तो घर का वातावरण कितना बदल सकता है। खुशी हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं आती है दोस्तों, कई बार वह छोटे व्यवहारों में छुपी होती है। हमारे गांवों में पहले चौपाले थी, लोग बैठते थे, हंसते थे, सुख दुख बांटते थे। आज जीवन बहुत बदल गया है, लोग पास रहते हुए भी दूर हो गए हैं। ऐसे समय में यदि हम पड़ोसी से मुस्कुराकर मिलें, दुकानदार ग्राहक का सम्मान से स्वागत करे, शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहन दे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, किसान, मजदूर सब एक दूसरे से आत्मीयता से मिले, तो समाज का वातावरण अधिक सकारात्मक बन सकता है। क्योंकि बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि कभी कभी सबसे बड़ी सामाजिक सेवा किसी अनजान व्यक्ति को यह एहसास दिलाना होती है कि इस दुनिया में अभी भी अपनापन बाकी है। जी हाँ, मुस्कान वह दीपक है जो पहले अपने चेहरे को रोशन करती है, फिर दूसरों के जीवन को। तो दोस्तों, बातें कार्यक्रम में आज हमारी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त अंजलि के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से हम रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से हमारे गांवों में पहले चौपालें लगती थी, लोग बैठते थे, हंसते थे, सुख दुख बांटते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। जी हाँ श्रोता साथियों, अगर हम इसी तरीके से हमारे व्यवहार में इन सारी चीजों को लाते रहे तो हमारे बच्चे भी यही सारी चीज सीखेंगे। बच्चे शब्दों से कम व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। यदि वे अपने घर में मुस्कुराते हुए चेहरे देखेंगे, सम्मानजनक बातचीत सुनेंगे, तो वे भी वैसा ही समाज बनाएंगे। लेकिन यदि हर समय तनाव, गुस्सा और शिकायत देखेंगे तो वही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। कई बुजुर्गों को बहुत कुछ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए थोड़ा समय, थोड़ा सम्मान और एक अपनापन भरी मुस्कान। कई बार 5 मिनट की बातचीत और एक स्नेह भरी मुस्कान उनके पूरे दिन को खुशियों से भर सकती है। जी हाँ श्रोता साथियों, आज बहुत से युवा जो हैं, वो भीतर से संघर्ष कर रहे हैं। किसी को पढ़ाई का दबाव है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को भविष्य का डर। ऐसे समय में यदि हम एक दूसरे का मजाक उड़ाने के बजाय एक मुस्कान और एक हौसला देने वाला वाक्य कहें, तुम कर सकते हो, तो शायद किसी के जीवन में नई उम्मीद जाग जाए। जी हाँ, मुस्कुराना सचमुच बहुत बड़ी सेवा है, यदि वह सच्चे मन से की गई हो तो। क्योंकि सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं होता, सेवा का अर्थ होता है दोस्तों किसी के जीवन में थोड़ा सुकून जोड़ना, थोड़ी उम्मीद जगाना, थोड़ा अपनापन देना। यदि हमारी मुस्कान किसी का डर कम कर दे, किसी का अकेलापन हल्का कर दे, या किसी को फिर से मुस्कुराने की वजह दे दे, तो यह भी समाज की सेवा ही है। इसलिए आज से ही हमें एक छोटा सा संकल्प लेना होगा कि हम हर दिन कम से कम 3 लोगों से मुस्कुरा कर मिलेंगे, किसी की मेहनत की सच्चे मन से सराहना करेंगे, किसी उदास व्यक्ति से 2 मिनट बात करेंगे, शिकायत से पहले धन्यवाद कहने की आदत डालेंगे। फिर देखिए दोस्तों, यह छोटा सा बदलाव केवल आपके चेहरे पर ही नहीं, पूरे वातावरण पर असर डालेगा। जी हाँ, समाज केवल बड़ी योजनाओं और बड़े कार्यों से नहीं बदलता, बल्कि छोटे मानवीय व्यवहारों से भी बदलता है। एक सच्ची मुस्कान, एक सम्मानजनक अभिवादन, एक हौसला बढ़ाने वाला वाक्य और एक अपनापन भरा व्यवहार, ये सब ऐसे छोटे बीज हैं दोस्तों, जिनसे विश्वास, प्रेम और सहयोग का विशाल वृक्ष तैयार होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज अधिक संवेदनशील, खुशहाल और एक दूसरे का साथ देने वाला बने, तो इसकी शुरुआत अपने चेहरे की मुस्कान और अपने व्यवहार की गर्मजोशी से करनी होगी। क्योंकि मुस्कुराने में केवल एक पल लगता है, लेकिन उसकी याद किसी के दिल में वर्षों तक रह सकती है। दुनिया को हमेशा बड़े बदलावों की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, कई बार उसे केवल ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो बिना किसी स्वार्थ के मुस्कान बांटना जानते हो। जी हाँ, इसलिए हम सभी को आज से ही जहाँ भी हम जाएं, अपने साथ केवल अपनी पहचान नहीं, बल्कि अपनापन, सम्मान और एक सच्ची मुस्कान भी लेकर जाएं। क्योंकि हो सकता है कि आपकी यही मुस्कान किसी थके हुए मन को नई उम्मीद दे दे, और यदि ऐसा होता है तो निसंदेह दोस्तों, यह भी समाज की सबसे सुंदर और सबसे सरल सामाजिक सेवाओं में से एक है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जाना कि क्या वाकई में मुस्कान बांटना भी एक सामाजिक सेवा है। बातें ढेर सारी हो गई हैं, अब समय हो चला है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी कि जब हम समाज को बदलने की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर बड़े अभियानों, बड़ी योजनाओं और बड़े संसाधनों पर जाती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि समाज केवल बड़े कार्यों से नहीं, बल्कि लाखों छोटे छोटे अच्छे व्यवहारों से भी बदलता है। एक व्यक्ति का विनम्र स्वभाव, दूसरे का सम्मान, तीसरे का सहयोग और चौथे की सच्ची मुस्कान, यही सभी मिलकर एक संवेदनशील समाज की नींव रखते हैं। इसलिए मुस्कान को कभी साधारण मत समझिए दोस्तों, क्योंकि वह इंसानियत की सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली भाषा है। आज दुनिया में लोगों के पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन सुकून पहले जितना नहीं। लोग एक दूसरे के बहुत करीब रहते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं,
ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के आपका हालचाल पूछ ले, सम्मान से बात कर ले या मुस्कुराकर आपका स्वागत कर ले, तो मन में यह विश्वास पैदा होता है कि दुनिया में अभी भी अपनापन बाकी है। यही विश्वास समाज को टूटने से बचाता है और लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि आपके पास देने के लिए धन नहीं है तो सम्मान दीजिए, यदि समय कम है तो भी दो स्नेह भरे शब्द बोलिए, और यदि कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक सच्ची मुस्कान जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए वह केवल एक मुस्कान हो लेकिन किसी दूसरे के लिए वही मुस्कान पूरे दिन की हिम्मत, जीने की नई उम्मीद और बस इस बात का विश्वास बन जाए कि दुनिया में अच्छाई अब भी जीवित है। यही छोटी सी शुरुआत एक बड़े और मानवीय समाज की पहचान बन सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, निपोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।